शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 38 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है गुरुवार,

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक

0: की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें

0: आज बाजरा की उन्नत खेती विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह, और इस विषय पर इनसे बात करने जा रही हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आप खरीफ फसलों की बुआई कर रहे हैं और बाजरा उत्पादन की आपकी फसल योजना है और अभी तक बुआई नहीं कर पाए हैं, तो बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व निदेशक कृषि डॉक्टर बीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बाजरा उत्पादन की क्या कुछ संभावना है अभी भी?
2: नमस्कार राय साहब और हमारे किसान भाइयों को हमारा अभिवादन। बहुत ही सामयिक प्रश्न आपने पूछा है। हमारे प्रदेश में जो खरीफ की मुख्य फसल धान है, उसके बाद दूसरा नंबर बाजरा का आता है, तो आज बहुत ही सामयिक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं बता दूं किसान भाइयों को कि ये मूल जो फसल है ये अफ्रीका की थी, और बाद में जो हमारे यहाँ की क्लाइमेट है और एशिया की अन्य देशों की क्लाइमेट है, यहाँ पे इसका प्रसार हुआ है, और मौसम की जो प्रतिकूलता बढ़ती जा रही है उसके लिए ये हमको ये लगता है कि सबसे मुफीद फसल है। और बुआई का उचित समय चल रहा है, ये 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में इसकी खेती हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
1: और वैल्यू एडिशन की बात करें तो संभावनाएं भी बहुत है।
2: बहुत संभावनाएं हैं। आप केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दोनों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी हमारे श्री अन्न है, जिसमें मुख्य हमारा बाजरा है सबसे अधिक एरिया, इस पे खेती पे भी ध्यान दिया जाए, और इसके जो प्रसंस्कृत करके इसके बिस्किट बन सकते हैं, लड्डू बन सकता है, केक बन रहा है, मठरियाँ बन रही हैं, और बहुत सारे जो महिला समूह हमारे हैं, कृषक उत्पादक संगठन हैं, इसको प्रसंस्कृत करके बाजार में ला रहे हैं, और धीरे धीरे इसकी स्वीकार्यता भी लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अच्छा है, ग्लूटेन फ्री है, डायबिटीज कम करता है आपके, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है बाजरा। हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और खेती के लिए भी मुफीद है कि अगर आप अभी तक धान की रोपाई नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप बाजरा की खेती पे भी ध्यान दें।
1: और आधे अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, ये कुल फसल 80 से 90 दिन की प्रजातियां हैं, इसकी जितनी भी हैं प्रचलित प्रजातियां जो अधिक उत्पादन देती हैं, सब 80 से 90 दिन में हो जाती हैं, तो आपको रबी की फसल के लिए पर्याप्त तैयारी का समय भी मिल जाता है, और बड़ी सफलतापूर्वक आप अपनी रबी भी कर सकते हैं 15 अगस्त को भी अगर आप बाजरा की बुआई करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या करें?
2: इसमें जो उपरहार के खेत हैं, अपलैंड खेत जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे मेरी सलाह ये है कि आप धान के बजाय आप इसकी खेती करें। ये कम पानी में, सूखे की स्थिति में भी हो जाता है। अगर उपरहार खेत में हम धान का करेंगे तो हमें अधिक पानी देना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बलुई भूमि हो, दोमट भूमि हो, दोनों में बड़ा सफलतापूर्वक हो सकता है। भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि उपरहार के जो बलुई भूमि है या दोमट भूमि है, उसमें अगर आप करेंगे तो आप इसमें सफलतापूर्वक इसकी खेती कर पाएंगे।
1: और खेत की तैयारी?
2: खेत की तैयारी सामान्य जो एक मिट्टी पलटने वाले हल से कर दीजिए, 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए उतना पर्याप्त है। गोबर की खाद अगर है आपके पास तो उसको पहले उसमें मिला दें। और इसमें एक फायदा यह है कि 2-3 बारिश हो जाती है तो जब आप खेत की जुताई करते हैं तो जो खरपतवार अधिकांश जो जमते हैं वो उसी जुताई के समय नष्ट हो जाते हैं, तो खरपतवार की समस्या भी कम आएगी अगर आप जुलाई के अंत में या अगस्त के प्रथम पक्ष में अगर आप बुआई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो।
1: प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनकी अच्छी पैदावार मिल सकती है?
2: इसमें जो संकुल प्रजातियां हैं, जो धन शक्ति है, इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है, और ये करीब करीब 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें उत्पादन आपको मिल सकता है, 75 से 80 दिन की है।
1: यानी फोर्टिफाइड वैरायटी?
2: हाँ, जिंक फोर्टिफाइड है, और एक राज 171 है जो राजस्थान की वैरायटी है, अपने यहाँ भी बहुत अच्छा हो जाती है, तो इसकी भी उत्पादकता करीब 10 क्विंटल के आसपास है और 80 दिन के अंदर ही ये भी तैयार हो जाती है। जो प्रजातियाँ प्रचलित हैं किसान भाइयों जो जानते हैं, आजकल बहुत मांग है, उसमें संकर प्रजातियों में 86M90 है, 9001 है, बलवान है, सुपर 27 है, सुपर बॉस है, ये सब प्रजातियां 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती हैं। इनकी उत्पादकता बहुत अच्छी है, 18 से 20 क्विंटल हमें मिल जाता है प्रति एकड़।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बाजरा उत्पादन के उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: 9450334778 9450334778

0: 7-8।
1: डॉक्टर बीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और बाजरा उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बाजरा की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है आज का सुविचार जिज्ञासा।
1: स्वयं अपनी एक ज्ञान शक्ति होती है। जिज्ञासा के जागते ही किसी बात को जान सकने का सहायक ज्ञान स्वयं ही विकसित होने लगता है। जो जो जिज्ञासा गहरी होती जाती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति ने ही उसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं अन्वेषक बनाया है। यदि जिज्ञासा न होती तो मनुष्य में इस प्रकार के प्रश्न ही क्यों जागते कि वह क्या है, ये विराट विश्व क्या है, इसका रचयिता कौन है और इस संपूर्ण प्रपंच का प्रयोजन क्या है, इन सब का आदि कहाँ से होता है, अंत कहाँ होगा और भला क्यों इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में वह परिश्रम करता। जिज्ञासा के अभाव में मनुष्य आज जिस ज्ञानपूर्ण स्थिति में आया हुआ है कभी ना पाता। आज मनुष्य के ज्ञान भंडार में जो कुछ संचय है वह आगे भी जो वृद्धि होगी उसका भी मुख्य हेतु उसकी जिज्ञासा ही होगी। आज यदि मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति कुंठित अथवा तिरोहित हो जाए तो उसका ज्ञान अभिमान जहां का तहां ठप हो जाए और तब आगे भी ये जान सकने की संभावना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए कि आखिर इन मंगल, चंद्र अथवा बुध ग्रहों पर क्या है, इनका वास्तविक अस्तित्व क्या है, क्या इन पर भी उसी प्रकार जीवन का अस्तित्व हो सकता है जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी पर, यदि इनमें जीवन है तो वहां के जीव किस प्रकार के हैं, मनुष्य की भांति उनके परम लक्ष्य मोक्ष की क्या परिभाषा होगी और न जाने उनका साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, कला कौशल, शिल्प व रहन सहन किस प्रकार का होगा। जिज्ञासा के आधार पर ही तो मनुष्य एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर आगे बढ़ता है। जब किसी में कुछ जानने अथवा सीखने की उत्सुकता ही न रहेगी तब वे क्यों व्यर्थ में किसी विषय पर ज्ञानोपार्जन करेगा। जो जिज्ञासु है वही गहरे पैठता है। जिज्ञासु की दृष्टि सामान्य लोगों से कुछ अधिक पैनी और खोजक होती है। किसी एक दृश्य या घटना को कोई सामान्य व्यक्ति देखता है तो वे उसके लिए एक साधारण बात होती है, किंतु जब उसी विषय पर किसी जिज्ञासु व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो वही साधारण बात कोई दार्शनिक अथवा कवित्व पूर्ण अभिव्यक्ति पाकर असाधारण बन जाती है। जिज्ञासु के लिए संसार की हर घटना एक रहस्य एवं एक महत्व लिए रहती है। एक रसोई के लिए भाप से बटलोई का ढक्कन उछलना सामान्य बात होती है, किंतु स्टीवेंसन के लिए भाप से ढक्कन का उठना गिरना एक असाधारण रहस्य की बात बनकर इंजन के आविष्कार का कारण बनी। एक माली के लिए पेड़ से फल गिरना एक सामान्यतम घटना है, किंतु उसके आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के ज्ञाता न्यूटन के लिए वह असाधारण महत्व की बात थी। इतनी असाधारण कि आगे चलकर उसी आधार सूत्र के बल पर अधर में लटके इस ब्रह्मांड के हर ग्रह नक्षत्र की चाल तथा अवस्था का रहस्य मालूम कर लिया गया। जिज्ञासा ज्ञान की महान जननी है। मनुष्य की जिज्ञासु बुद्धि उस चींटी की तरह सतत प्रयत्नरत रहती है जो सात पर्दों में छिपी हुई शक्कर को भी खोज कर दम लेती है। जिज्ञासु बुद्धि का सहज गुण होता है कि जब तक वह अज्ञात रहस्य को खोज नहीं लेती, संतुष्ट नहीं होती, दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है। जिज्ञासु की बुद्धि बड़ी ग्रहणीय होती है। वे एक बार में ही कोई बातें देख सुनकर ग्रहण कर लेती है और फिर कभी नहीं उसे भूलती। अजिज्ञासु बुद्धि कुंद एवं कुंठित होती है। हजार बार देखने, सुनने और पढ़ने पर भी वे ना तो किसी बात को ठीक से समझ पाती है न ही याद रख पाती है। जिज्ञासा का अभाव मनुष्य को मंदबुद्धि बना देता है। जिज्ञासु व्यक्ति किसी भी बात की तह तक पैठ कर उसमें से किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता खोज लाता है। जिज्ञासा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक

0: आध्यात्मिक एवं आध्यात्मिक चारों उन्नतियों की हेतु होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जिज्ञासा को प्रमाद पूर्वक नष्ट न करे, उसे विकसित एवं प्रयुक्त करे, और यदि जिज्ञासा नहीं है तो उसे चाहिए कि वह तन्मयता एवं गहरे बैठने के अभ्यास से उसे पैदा करे, क्योंकि जिज्ञासा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों महान क्षेत्रों में प्रगति का आधार बनती है।
1: जिज्ञासा, डॉक्टर शीबा राकेश के स्वरों में अभी आप सुन रही थी आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ, भक्ति और प्रेम भाव से परिपूर्ण आराधना

प्रभु श्री कृष्ण जिनको मीरा मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं, उनके जीवन में प्रभु के सिवा और कोई भी नहीं है। हर समय उन्हीं की पूजा और आस्था में अपना समय व्यतीत करती मीरा प्रभु के मनमोहक रूप का गुणगान करते हुए कुछ यूं अपनी बात कहती हैं, हे प्रभु, यदि सारा संसार मेरा साथ छोड़ दे, परंतु आप मेरा साथ मत छोड़ना।

माता रानी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माता रानी उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाती। किस्मत के मारों का माता रानी ही बेड़ा पार लगाती हैं। हे माता, आप तो संपूर्ण जगत की जननी हैं, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।

सही अर्थों में वास्तविक धर्म है मानव धर्म। हे मानव, यदि तू अपने हृदय में सत्य, शांति, दया व अहिंसा की भावना रखेगा तो तेरा गुरु तुझे अपने हृदय में ही मिल जाएगा। सच्चे मन से तू जो भी मांगेगा तुझे वही मिलेगा। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर तेरी हर समस्या दूर होगी।

माता रानी की ममता की कोई सीमा ही नहीं है। माता के चरणों में ही हम सभी भक्तों को सुख मिलता है, तभी तो हम इन पर्वतों की ऊंचाइयों को चीरते हुए पहुंच जाते हैं माता के दरबार। माता की इसी ममतामयी छाया में आकर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। आज आप सुनेंगे भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत, हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम

और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है, न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ आए हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर श्रीकांत परगांवकर के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह की 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार।
4: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्गविद्युत

0: औद्योगिकी वीथी तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर प्रमुखान आधारभूत संरचना प्रकल्पान समीक्षितवान। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय सम्पर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयाणां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्यतावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75th जून मासस्य 25 दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयम् दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य 30th दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदातृसूचीनां विशेषगहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रमम् अभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलम् तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदात्री सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिमबंग, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारम् अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्व मध्यप्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नानास्थानेषु उष्णतरंगस्य अनुमानम् अपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं नभः भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः सम्भावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू संप्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 7 बज चुके हैं और चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमें कितना ज़रूरी होता है, ये रोज़ हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं कुल्थी दाल के बारे में। जी हाँ, परंपरा से पोषण तक का सफर, तो आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज की जो

0: हमारी पारंपरिक थाली का हिस्सा तो था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक भोजन शैली में कहीं खो गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम फिर से उसकी ओर लौटें। आज का विषय है कुमठ, जिसे कुछ जगहों पर कुल्थी दाल, हुलगा या होरिया भी कहा जाता है। ये एक देसी दाल है जो हमारी मिट्टी से जुड़ी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। कुमठ एक प्रकार की मोटी दाल है जिसका स्वाद अलग होता है, हल्का तीखा मिट्टी जैसा, लेकिन जितना जमीन से जुड़ा इसका स्वाद है उतना ही इसकी ताकत भी गहराई से हमारे शरीर को लाभ देती है। ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में सर्दियों के दिनों में अधिक खाई जाती है, लेकिन इसके फायदे ऐसे हैं कि हर मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये दाल भारत के कई हिस्सों में सदियों से खाई जाती रही है। उत्तर भारत में ये ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए दी जाती है, तो दक्षिण भारत में इसे पथरी और किडनी की समस्याओं में उपयोगी माना जाता है। कुमठ में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और खास बात यह है कि इसमें ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। ये एक लो फैट हाई फाइबर दाल है जो पाचन को सुधारती है, कब्ज से राहत देती है और आंतों की सेहत के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कुमठ एक उत्तम भोजन है, क्योंकि ये पेट को देर तक भरा रखती है और बार बार खाने की आदत को रोकती है। इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व भरपूर पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये दाल किडनी की सफाई में भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। बहुत से आयुर्वेदिक नुस्खों में कुमठ का पानी पेशाब से जुड़ी समस्याओं और पथरी के उपचार में दिया जाता है। कुमठ का सूप भी बनाया जाता है जिसे छानकर दिया जाए तो शरीर को नमी मिलती है और आंतरिक सूजन कम होती है। खास बात श्रोताओं ये है कि कुमठ को पकाने का तरीका भी बेहद आसान है। इसे भिगोकर दाल की तरह उबालें या फिर इसकी रोटी बनाकर खाएं। स्वाद और सेहत दोनों में इसका कोई जवाब नहीं। कई इलाकों में इसे लहसुन और हींग के तड़के के साथ पकाया जाता है। इससे न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ता है बल्कि ये पाचन में भी मदद करती है। आज के समय में जब हम प्रोटीन शेक्स, पिल्स और विदेशी सुपरफूड्स की ओर दौड़ रहे हैं, तब हमारी अपनी जमीन का ये अनाज चुपचाप एक कोने में पड़ा है, जबकि इसके गुण किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्लीमेंट से कम नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सस्ता है, देसी है और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और शायद यही कारण है कि अब धीरे धीरे लोग फिर से कुमठ को अपने भोजन में शामिल करने लगे हैं। श्रोताओं, जब हम देसी भोजन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ स्वाद या पोषण ही नहीं, एक जीवन शैली छिपी होती है जो ऋतुओं के अनुसार चलती है, जो शरीर की प्रकृति को समझती है और जो प्रकृति से सीधा संवाद करती है। कुमठ भी ऐसा ही एक संवाद है, मिट्टी से, स्वास्थ्य से और हमारी परंपरा से। तो इस बार जब आप बाजार जाएं, तो दालों की अलमारी में कुमठ को भी एक स्थान दीजिए। इसे अपने घर के बच्चों को भी दीजिए जो शायद इसके नाम से भी परिचित ना हो। उन्हें बताइए कि ये वही दाल है जो हमारी दादी नानी हमें सर्दियों में बड़े प्यार से देती थीं और जो शरीर को भीतर से मजबूती देती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो हमारी रसोई और हमारी सेहत दोनों से जुड़ा हो। तब तक स्वस्थ रहिए, परंपरा से जुड़िए और देसी दालों को अपनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: कुल्थी दाल, परंपरा से पोषण तक का सफर, इसके बारे में अभी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज पेश किया जाएगा जायका शेफ भीमक प्रसाद के साथ। प्रेजेंटर होंगे सईद अख्तर और साथ ही साथ आज के कलाम शायर होंगे रफ़ी सीतापुरी। शांति के लिए युद्ध है जरूरी, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पशुओं में चारा विषाक्तता कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों के लोक माधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 पर आप आनंद लेंगे अवधी लोक गायिका डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाए लोकगीतों का। साथ ही साथ इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:50 पर।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब आइए डालते हैं एक नज़र आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम 6:30 से हमारी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा

कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फ़ोन इन प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12 बजे का। युवा तरंग, युवा साथियों का ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 से, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी उज्ज्वला योजना पर, साथ ही ग्राम्य आधारित अर्थव्यवस्था और गांधी दर्शन विषय पर युवा साथी सुनेंगे डॉक्टर विशाकांत श्रीवास्तव की वार्ता। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का, जिसमें आज आप सुनेंगे डिजिटल लेन देन कितनी बचत कितनी आसानी, इस विषय पर अर्पित की ओबी प्रस्तुति। घर आंगन, महिलाएं अपना ये कार्यक्रम सुन सकती हैं दिन में 1:15 से। तो श्रोताओं, ये थी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। तो श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा।

आर लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय

चर्चा करने जा रहे हैं, जो पहली दृष्टि में विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन इतिहास समाज और मानव जीवन के अनेक पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। आज का विषय है, शांति के लिए युद्ध है जरूरी।

जी हाँ, सामान्य रूप से शांति और युद्ध को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। शांति का अर्थ है सौहार्द, स्थिरता और सुखद सह अस्तित्व, जबकि युद्ध संघर्ष, टकराव और विनाश का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इतिहास के अनेक उदाहरण हमें ये बताते हैं कि कुछ परिस्थितियों में शांति की रक्षा के लिए संघर्ष करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब अन्याय बढ़ता है, जब किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगता है, जब मानवाधिकारों का हनन होने लगता है, या फिर जब समाज के अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब सिर्फ मौन रहना समाधान नहीं होता। ऐसे समय में अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही और सत्य की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। यही संघर्ष आगे चलकर शांति की स्थापना का मार्ग बनता है।

0: श्रोताओं, भारतीय संस्कृति और दर्शन में भी धर्म और न्याय की रक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत की घटना की बात कहें तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को कभी प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए और फिर वो सारे प्रयास विफल हो गए और अन्याय का अंत असंभव दिखाई देने लगा, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया था। ये युद्ध सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना का माध्यम बन गया था। यही कारण था कि महाभारत का संदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि शांति का मूल्य तभी है जब वो न्याय पर आधारित
1: है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: दोस्तों, विश्व के इतिहास में भी अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि एक शांति पाने के लिए युद्ध कितना जरूरी हो गया था। जी हाँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने 680 ईस्वी में जब कर्बला के मैदान में यजीद की अन्यायपूर्ण सत्ता और अत्याचार के सामने जब झुकने से इनकार कर दिया था, तब मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था।
2: यादगारे कर्बला है ये अलम अब्बास का, आज भी लहरा रहा है ये अलम अब्बास का।
0: अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के परिवार के अनेक सदस्यों को भी शहीद कर दिया गया था। उन्होंने अपने बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा का अमर संदेश दिया। कर्बला के मैदान का संदेश हमें हर हाल में सत्य का साथ देने और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि होती है। यदि कोई बाहरी शक्ति उसके अस्तित्व को चुनौती देती है तो उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। हमारे देश के वीर सैनिक भी सीमाओं पर इसी उद्देश्य से तैनात रहते हैं, ताकि देश के भीतर शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण बना रहे। हालांकि ये भी उतना ही सत्य है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का पहला समाधान नहीं होना चाहिए। संवाद, समझ, कूटनीति और सहयोग हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तव में इस विषय का गहरा अर्थ केवल राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्ध तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के संघर्ष होते हैं। अज्ञानता के विरुद्ध ज्ञान का संघर्ष, बुराइयों के विरुद्ध अच्छाई का

संघर्ष, भय के विरुद्ध आत्मविश्वास का संघर्ष और अन्याय के विरुद्ध सत्य का संघर्ष। इन संघर्षों को स्वीकार किए बिना हम जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, शांति कोई कमजोर अवस्था नहीं है। शांति के पीछे साहस, धैर्य, अनुशासन और न्याय की शक्ति होती है। जिस समाज में न्याय नहीं होता, वहां शांति भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए हमें ये समझना होगा कि शांति और संघर्ष दोनों का उद्देश्य मानवता की रक्षा और समाज के कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शांति की रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है और शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग शांति की स्थापना में ही है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि अपने जीवन में संवाद, सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे, लेकिन अन्याय और असत्य के सामने कभी नहीं झुकेंगे। तो इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने

0: विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संसुष्टि की गई है।
2: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। KGMU के प्रवक्ता KK सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
3: जो दुर्घटना हुई है लखनऊ में, इस क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में, उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
4: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्ट

0: एक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
1: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबोकालोनजादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
2: तो भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
1: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
3: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान करती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR की तैयार होनी है जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
6: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। तो इसमें आज सुनिए पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन, राग है शुक्ला बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन का ख्याल गायन, राग था शुक्ला बिलावल। इसी कार्यक्रम के साथ नमस्कार लखनऊ का यह खास सेगमेंट अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की।

0: बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया।

0: दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलुई दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1

0: एशेज के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. Another news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress

0: दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखादेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखादेही से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चार रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में चार बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज़ रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखादेही के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए E0FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाज को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफुजात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत उन हकूक को ख़त्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी की तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वज़ीर आज़म लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जाँच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का अहतमाम कर रही है जो इमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
0: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपू लेक दर्रे के नज़दीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज़्यादा ताजिरों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाज़त दी जाएगी।

ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4th मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपने

0: मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4th मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नज़रिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के मेल और फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो श्रोताओं, जल्दी से करें हमें मेल और भेजें अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों की फरमाइश। हमारी ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत हम हैं राही प्यार के, इस फिल्म से।

0: नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर समीर का लिखा यह गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म थी हम हैं राही प्यार के। और श्रोताओं आपको बता दें, इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया था MLB रोड ग्वालियर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, SK पप्पी। आप सबने सुनना चाहा था हम है राही फिल्म, हम है राही प्यार के इस फिल्म का गीत जिसको हमने आपको अभी सुनवाया। तो श्रोताओं आप इस वक्त सुन रही हैं आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम, जिसमें आप हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो आप जल्दी से करें हमें मेल और सुने अपनी फरमाइशी फिल्मी गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा।

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारा अगला मेल, जिसे लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। आप सबने हमें मेल भेजा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपने फरमाइश की है गाइड फिल्म के इस प्यारे से गीत की।

0: गाइड फिल्म से। आवाज थी लता मंगेशकर की। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत, जिसमें आप भी हमें भेज सकते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों पर मेल।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बदकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो चलिए शामिल करते हैं अपना अगला मेल अगली फरमाइश के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगली फरमाइश हमारे श्रोता की क्या है। इन्होंने सुनना चाहा है साजन का घर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है साधना सरगम और कुमार सानू ने। संगीत है नदीम श्रवण का और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। और आपको बता दें कि इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। लिखने वाले श्रोतागण हैं मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री और मोहम्मद अलतमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और इसी गीत के फरमाइश का एक और मेल हमें आया है जामा मस्जिद रोड गोगावा से। इसे लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं हाजी इशहाक लोलामानी और मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अय्यूब शेरी। तो चलिए, आप सबका मेल हमने शामिल किया है और आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं आपको साजन का घर फिल्म से ये प्यारा सा।

मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत। तो चलिए आपका भेजा हुआ एक और मेल शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गीत। तो ये मेल हमें आया है अनारकली बाजार जगराव से। लिखने वाले श्रोतागण हैं हमारे सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। आपने सुनना चाहा है हमें और जीने की चाह।

खत न होती। जी हाँ, अगर तुम न होते फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

अगर तुम न होते, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। और कार्यक्रम में अब चलिए अगला मेल शामिल करते हैं और सुनवाते हैं उनकी फरमाइश का ये गीत। तो अगला मेल हमें आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोतागण हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके सभी परिवार के सदस्यगण। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। ये गीत आप सुन रही हैं अलका याग्निक और

0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अनु मलिक के बनाई तर्ज पर हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज़ थी अलका याग्निक के साथ कुमार सानू की। इसी के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाज़त। नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 9:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
2: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
3: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उनको रिवाइवल के प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए जिसमें जो पहले 2 शुगर मिल रिवाइव किए गए।
2: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान के तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के

0: प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिलाधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
1: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे जिनकी निगरानी के लिए 1400 के ऊपर के CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। टुलूस की जो संख्या है वो 127 है। इसको लेकर के पुलिस की सभी ड्यूटीज लग गई है एज वेल एज प्रशासन की ओर से भी सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है।
0: बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असम प्रभारी और पूर्व लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। योग दिवस इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बस्ती जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में मानक की चेकिंग की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत एंट्री और एग्जिटिंग की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और DIOS लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले। तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
3: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डायट परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जन प्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णलान में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया,
4: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से सुबह 5:25 पर ट्रेन यहां से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
3: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं

0: बीते दिन राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्यप्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिला अधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
1: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। आपने सुनी बस्ती और बदायूं जिले की हलचल। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: श्रोताओं, मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और अब आइए डालते हैं एक नज़र आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। शाम 6:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज की पेशकश है जायका, शेफ भीखम प्रसाद के साथ। प्रेजेंटर होंगे सईद अख्तर और साथ ही साथ आज के कलाम शायर होंगे शफी सीतापुरी। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रही थी देश गान। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं और अब पेश है आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से उर्दू प्रोग्राम, जिसमें आज की पेशकश है जायका। तो आइए सुनते हैं।
1: आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब, कबूल फरमाएं। सामाइन, आज के इस खुसूसी उर्दू प्रोग्राम में हम मौजूद हैं द क्लार्क्स अवध होटल में, जो अपनी बेहतरीन मेहमान नवाजी, आला मेयार की खिदमात, लजीज खानों के लिए खास शोहरत रखता है। खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं बल्कि तहजीब, सकाफत और जौक का आईना भी होता है। एक अच्छे खाने के पीछे शेफ की मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और बरसों का तजुर्बा शामिल होता है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ हैं होटल के मारूफ शेफ भीकम प्रसाद साहब, जो हमें खानों की तैयारी, जदीद रुझानात और इस शोबे के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराएंगे। आइए उनका खैर मकदम करते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ और अपने पेशा वराना सफर के बारे में कुछ बताइए।
2: जब हम लखनऊ में रहने वाले, हम यहाँ काकोरी के, जब हम काकोरी से लखनऊ आए, काफी दिन तक चौक में रहते थे। खाना बनाना तो हमने वही सीखा था और वही लोगों ने हमको सिखाया था। उस टाइम में ये होटल बना करीब 73-74 में बनाए, तो हम तो पहली बार यहाँ होटल देखने आए थे।
3: अच्छा।
2: खाना बनाते थे, कुक तो हम तब भी थे
3: जी।
2: खाना देखा हमने तो इतना बड़ा होटल हमने कभी देखा ही नहीं था। देखा इतना बड़ा होटल भी हो सकता है, चलो इसको अंदर देखा जाए। उस टाइम पर घूमने का देखने का शौक था
3: जी।
2: स्टेडियम यहाँ पे था, ये 76 था, हाई कोर्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था। और ये रास्ते पर तो लोग लूट लिया करते थे, ये आलम था। तो हम लोग जब आते थे अमीनाबाद होके आते थे यहाँ स्टेडियम मैच देखने, ये उस टाइम की बात है। तो उस टाइम में हम यहाँ आए, फिर आए यहाँ तो अंदर घुसने के लिए नौकरी करते हैं, चलो देखते हैं, तभी थोड़ी देर करें भाग जाएंगे। हम तो ये सोच के आए थे, उम्र भी वही थी। यहाँ जब अंदर आए तो यहाँ किचन में ज्वाइन किया हमने, और किचन में जब गए तो यहाँ एक शेफ हुआ करते उस टाइम में, मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी।
3: मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी,
2: हाँ, वो यहाँ पे इंडियन के, मुगलई के इंचार्ज थे।
3: अच्छा।
2: वो एक तो बहुत लंबे चौड़े थे।
3: अच्छा।
2: चेहरा भी ऐसा था, मुझे भी ऐसी थी, तो देख के ही आदमी घबराता था कि अगर आदमी सामने आ जाए तो वैसे ही देख के ही उठ जाए। हाँ, मगर वो

0: थोड़ा सख्त आदमी थे
1: जी।
0: मगर आदमी अच्छे थे, दिल के अच्छे आदमी थे। टोपी लगाते थे बड़ी सी उस टाइम में।
1: अच्छा,
0: उनका देखा हमने तो, उनके और चेले भाई भतीजे थे दो तीन, वो सब हमारी उम्र के थे, उनके साथ में हम भी लग गए काम करते रहे। फिर उनका जब हमने वो देखा एक नक्शा
1: जी जी,
0: जिनका एक रॉब, फिर हमको लगा मुझे भी सेफ ही बनना पड़ेगा, सेफ बनना चाहिए। तब हमारे समझ में आया कि सेफ की इज्जत और वक्त क्या होती है
1: जी जी।
0: तो फिर उस टाइम से हम नौकरी करते हैं, तो फिर करते रहे, उनके साथ रहे हम करीबन 74, 75, 76 करीब तीन साल के बाद वो तो चले गए। हाँ, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, तो यहाँ चले गए थे आगरा। आगरा में नया होटल खुला मुगल वालों का, वहाँ चले गए।
1: मतलब इसी तरह से आपका जो सेफ बनने का शौक था उन्हीं की वजह से हुआ।
0: और वहाँ दिल्ली जाके देखा हमने उनका, तो उनका और बढ़िया नक्शा हो गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे तो गेट पे ही शेफ को पूछो तो बस ठीक है जाइए, या वो बुला देंगे। तो वहाँ देखा जब इनका, तो और बढ़िया हो गया। फिर वहाँ हमने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद वापस आए, पर हमने वहीं से ये सोच लिया कि हमको भी शेफ बनना है। और तब से हम लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसके बाद से हमने नया ये कैसे होता है सबकी जड़ में जाना शुरू किया। तो ये उनका देखा हुआ तो हमारा था ही, जैसा वो करते थे, जैसे वो चिकन दो तीन बनाते थे, दो तीन टाइप के वो चिकन बनाते थे
1: जी।
0: चिकन मुगलई, चिकन मसाला बनाया करते थे, मटन बनाते दो तीन, मतलब उनकी डिशें अभी भी हम आधी बनाते हैं, आधी तो अभी बची हुई है,
1: अभी बची हुई है
0: जिनको बीच बीच में लाएंगे।
1: सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्लार्क अवध में बतौर शेफ आपकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या क्या है?
0: बतौर शेफ जिम्मेदारियाँ तो बहुत होती हैं
1: जी,
0: जैसे कि एक तो फूड कॉस्ट देखना होता है, दूसरा स्टाफ को देखना होता है
1: बिल्कुल,
0: तीसरा सफाई देखना होता है, चौथा स्टाफ का ग्रोथ, जैसे दाढ़ी बनी है कि नहीं, कैप लगी है कि नहीं, नाखून उसका कटा हुआ है या नहीं है, जूता पहना है कि चप्पल पहना है, ये भी देखना होता है, सफाई भी देखनी होती है। फिर उसके बाद आता है क्या क्या सामान हमने आज मंगाया है
1: जी जी,
0: उसमें से क्या आया है।
1: अच्छा,
0: और क्या नहीं आया है। फिर रात में ये करना पड़ता है कि वो कल
1: जी जी,
0: कल हमको क्या क्या चाहिए वो भी देखना होता है।
1: अच्छा, उससे एक दिन पहले ये सब चीजें।
0: हाँ, क्योंकि ये हमारा घर तो है नहीं,
1: बिल्कुल
0: ये तो कंपनी है, अब कंपनी को आप पहले से रिक्वायरमेंट नहीं देंगे तो लाएगा कैसे, और हम रिक्वायरमेंट अगर पहले से दें, अब हमको तो मालूम नहीं कि कितना बिक जाएगा, सेल होते होते रात हो जाती है, इसलिए हम रिक्वायरमेंट बनाते हैं रात में। 11 बजे के बाद 11:30, 12, 12 बजे बना दें, जब हमारा क्लोजिंग टाइम होता है। सुबह लड़का आएगा वो 9 बजे डाल देगा स्टोर में, स्टोर वाला 10 बजे आएगा, वो 11-12 बजे हमको सामान निकाल देगा।
1: अच्छा।
0: उसके बाद हम ड्यूटी में तब तक आते हैं 12:30, 12:30 बजे, वो सारा सामान चेक करते हैं, इसमें क्या आया और क्या नहीं आया, जो नहीं आया वो उसको पूछते हैं, वो बताएगा अभी मंगा के देंगे या नहीं है या आने वाला है, फिर वो करते हैं।
1: इस तरह की जिम्मेदारी आप यहाँ निभा रहे हैं,
0: इसलिए यहाँ ये सब कर रहे हैं,
1: ये सब करना पड़ रहा है
0: कर रहे हैं, और ये सब करना पड़ेगा। अगर आप या कोई भी लड़का जो शेफ बनना चाहता है तो उसको सारी जिम्मेदारियाँ करनी ही पड़ेंगी
1: जी। इस होटल की कौन सी खास डिश मेहमानों में सबसे ज्यादा मकबूल है?
0: इस होटल की जो हमारा फलकनुमा रेस्टोरेंट है
1: जी जी,
0: इसका तो जो खास है उसमें एक गोश्त फलकनुमा है जो बहुत फेमस है,
1: गोश्त फलकनुमा।
0: हाँ, और एक पनीर हजरत महल है,
1: पनीर हजरत
0: महल, और एक सब्ज गलावट, ये सब्ज गलावट वेजिटेरियन है। तो वैसे तो यहाँ का सारा ही कुछ फेमस है, रेस्टोरेंट ही फेमस है, लेकिन ये चीज़ें आदमी आँख बंद करके ऑर्डर देता है, गोश्त फलकनुमा ले आओ, या हजरत महल पनीर, या फिर अगर हमको किसी को खिलाना होता है साहब वेज में हमको क्या खिलाना है, कोई कबाब चाहिए, तो उसको खिलाते हैं सब्ज गलावट। ये सब तो यहाँ की मशहूर डिश है, और बनाने को तो बहुत चीज़ें बनाते हैं।
1: एक बेहतरीन खाना तैयार करने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: सबसे बेहतरीन खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा उस की जड़ में।
1: बिल्कुल,
0: जैसे खाना बनाते हैं आपको उसमें जिंजर गार्लिक डालनी है, तो हाथ साफ सुथरे नहीं है जैसा देखा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लोग क्या करते हैं, हाथ साफ नहीं है,
1: काट देते हैं,
0: या प्याज छीला और ठीक से छीला नहीं, उसमें काली लगी होती कई जगह, वो साफ नहीं हुआ, तो वो फिर खाना में आगे से सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी है, अगर आपने छोड़ दी तो वो कमी आगे जाके दिक्कत पैदा करेगी। तो वो आप वहाँ से शुरू करें, पहले अपने आप को, आपके कपड़े साफ हों, आपके हाथ साफ हों, आपके नाखून कटे हुए हों, उसके बाद आप जो काम करें वो साफ सुथरा हो। आप गोभी काट रहे हैं या जो भी काट रहे हैं या जो भी बना रहे हैं वो पहले धुला हुआ हो, ऐसा नहीं कि भिंडी जैसे ही बाजार से आई आपने काटा शुरू कर दिया, उसको काटते हैं पहले, उसको धोते हैं, फिर उसका पानी सुखाते हैं, उसके बाद में साफ सुथरा के, अगर आप साफ से काम करेंगे तो आपका काम भी आगे से अच्छा ही होगा और साफ सुथरा होगा। तो शुरू तो वहाँ से करते हैं।
1: खाने की तैयारी में मैयार और सफाई को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम जरूरी है?
0: जैसे कि हम कोई ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी बहुत जरूरी है, अगर आपके पास ग्रेवी नहीं है तो कुछ आइटम तो बन जाएंगे पर ज्यादा नहीं बन सकते।
1: अच्छा,
0: तो ग्रेवियाँ बनाते हैं हम 3-4 किस्म की, एक रेड ग्रेवी बनाते हैं।

0: एक व्हाइट ग्रेवी बनाते हैं और एक ब्राउन ग्रेवी बनाते हैं
1: जी।
0: वैसे चार होती हैं, एक पालक ग्रेवी बनाते हैं पर पालक की जा कम बिकता है, कुछ आइटम है उसके जो चार इसलिए वो उसे बनाते हैं। और ये सब तीन ग्रेवियों के आइटम ज़्यादा होते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे हजरत महल भी इसी ग्रेवी में है, लाल रेड ग्रेवी में, बटर चिकन भी इसमें ही है, चिकन टिक्का भी इसमें ही है, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो तीन ग्रेवी हम पहले से रेडी करते हैं।
1: अच्छा,
0: अब इनको रेडी करने के लिए आपको जिंजर गार्लिक चाहिए, तो जिंजर गार्लिक को साफ सुथरा करना पड़ेगा, महीन काटिए, फिर बस उसको बढ़िया धोइए, धोने में छिलके विलके निकालिए, छिलके निकालने के बाद फिर उसको पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के अलग रखते हैं, काजू का भिगा के बढ़िया से धो के फिर उसका पेस्ट बना के अलग रखते हैं। टमाटर प्यूरी टीन में आती है, उसको लेके हम काट के डब्बे से बाहर निकाल के बॉल में करके फिर उसको रेडी करके पहले से रखते हैं। तेल हमारे पास है कि नहीं, वो भी कौन सा है, साफ सुथरा है कि नहीं, वो रखते हैं। फिर जिस बर्तन में बनाना है फिर उस बर्तन को साफ सुथरा रखते हैं। ये सब तो हो गई तैयारी, बनानी तो हम इसके बाद शुरू करते हैं।
1: तैयारी पहले करते हैं,
0: हाँ,
1: फिर बनाने की
0: फिर शुरू करते हैं,
1: बनाना शुरू करते हैं।
0: क्योंकि उस टाइम में हमने तेल डाल दिया, अब प्याज ढूंढ रहे हैं, प्याज लाए तो जल गई, या जब तक है या कुछ और लाए जल गई, इसलिए हमने वो पहले से पूरा रेडी कर लेते हैं ताकि हमको बीच में रुकना नहीं पड़े। जैसे यहाँ की दाल, दाल पलकनुमा, वो भी काफ़ी मशहूर है, फेमस है, और ये दाल भी हमने इम्तियाज कुरैशी से ही सीखी है। अभी भी रेस्टोरेंट में दिल्ली में दाल बुखारा के नाम से बहुत फेमस है,
1: दाल बुखारा के नाम से
0: दाल के वहाँ पे फेमस है। वो तो बेचारे अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बुखारा रेस्टोरेंट उन्होंने ही शुरू किया है।
1: अच्छा,
0: ये दाल भी हमने उन्हीं से सीखी।
1: आजकल लोगों के खाने के जौक में क्या तब्दीली आई?
0: आजकल के लोग बहुत चेंज हो गए
1: जी।
0: क्योंकि जैसे भी अभी हमारे वहाँ लोग आते हैं खाना खाने, तो उनके जब कई बार ऐसा भी होता है जो उनके माँ बाप होते हैं वो तो हमारे वहाँ खाना खाते हैं, अब उनके बच्चे आते हैं, उनको चाहिए पिज्ज़ा, किसी को चाहिए पिज्ज़ा, किसी को चाहिए मोमो, तो उसके लिए एक नया रेस्टोरेंट हमने खोला हुआ है यहाँ पे। तो हमने देखा कई बार उनके माँ बाप यहाँ बैठे हैं, उनसे बात की, कितने लोग हैं आप लोग? बोला हम लोग लोग तो आठ हैं पर चार लोग नीचे बैठे हैं। नीचे क्यों बैठे हैं? बोला वो सब बच्चे हैं, उनको किसी को पिज्ज़ा चाहिए, किसी को मोमो चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, तो वो सब नीचे ले आते हैं।
1: अच्छा,
0: तो आजकल के लोगों में और पहले के लोगों में यही डिफरेंस है। आज लोगों को चिकन मुगलई वो नहीं खाएंगे, बिरयानी तो खाएंगे शौक से, लेकिन उनको पिज्ज़ा भी चाहिए, उनको मोमो भी चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, सर्व करते हैं। अगर आपको विशेष रिक्वायरमेंट है, अगर आपके मान लीजिए एक बच्चा है, अब उसको एक डोसा चाहिए या फिर एक बर्गर चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो ऑर्डर लेके हम नीचे से मंगा देते हैं।
1: अच्छा, नीचे मंगा देते हैं?
0: मंगा देते हैं, वो सर्व कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत से लोग आते हैं उनको पिज्जा चाहिए
1: जी,
0: तो हम जो लोग क्रस में ऑर्डर करके वहाँ मंगा देते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन इस पर बनेगा वो जो लोग क्रस में ही,
1: सही,
0: जो जहाँ बनता है वही बनेगा।
1: अवध की रवायती खानों की क्या खसूसियात हैं?
0: देखिए, अवध की खसूसियत क्या है, अवध तो एक क्षेत्र है जो पहले भी था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और बाद में आए मुगल
1: जी,
0: तो उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया,
1: बिल्कुल,
0: अब ये अवधी और मुगलई हो गया।
1: अच्छा,
0: तो अवधी खाने तो पहले ही बढ़िया थे, लेकिन नॉन वेज कम था। ये जो मुगलई खाना है उसमें खास बात उसकी ये है, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग पुराने लोग करते हैं, नए लोग तो नहीं। पुराने लोग क्या करते हैं ये भी हमने बहुत पुराने के लोगों से ही सीखा है। मुगलों का खाना जो बनाते थे या जो उस टाइम के कारीगर थे
1: जी जी,
0: वो डालते सब कुछ थे, जैसे बड़ी इलायची हुआ, तेज पत्ता हुआ, दालचीनी हुआ, केसर हुआ, हम भी वो सब डालते हैं
1: जी।
0: खास बात उनमें जो थी हम भी वही करते हैं, ये सब दिखना नहीं चाहिए।
1: अच्छा,
0: अब लोग क्या करते हैं, कहीं आप जाइए वो तेज पत्ता भी डाल देंगे, दालचीनी भी डाल देंगे, मगर वो आपको जब सर्व करेंगे दिखता है। मुगलई खाने का ये खासियत नहीं है।
1: अच्छा,
0: आप सब डालिए लेकिन खाने वाले को ये पता लगे कि टेस्ट बढ़िया है, क्या क्या पड़ा है ये सिर्फ बनाने वाले को पता होना चाहिए। तो बहुत ही फाइन खाना चाहिए, बहुत फाइन, बहुत साफ सुथरा।
1: जी जी।
0: ये नहीं कि आपने उसमें तमाम लकड़ी पकड़ी डाल दी और वैसे ही सर पर दिया, ये उसकी खास बात है।
1: एक शेफ को किन सलाहियतों और खूबियों का हामिल होना चाहिए?
0: आजकल तो बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं
1: जी।
0: कोई भी कंपनी आजकल का शेफ को चाहती है कि ये शेफ सब कुछ देखे
1: जी।
0: मतलब खाना भी बनाना आना चाहिए, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, गेस्टों से बात भी कर ले और यहाँ स्टाफ को डील भी कर ले
1: जी जी।
0: जो हमारा स्टाफ नहीं बनाता वो बना के भी दिखा दे और वो किसी किचन को किसी नए रास्ते पर ले जाए, नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन करे, कोई नया नई चीज लाता रहे
1: जी।
0: ये भी चाहते हैं, तो आजकल के शेफ को तो ये सब आने चाहिए आजकल के शेफ से। क्योंकि क्या होता है वहाँ जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ गए होंगे इंस्टीट्यूट में अब
1: जी,
0: तो वहाँ पे लोग बता देते हैं साहब आपको तो ये बना देंगे, आपको ये बना देंगे। हकीकत तो ये है वो बनाएंगे और बनेंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं
1: तब आइए।
0: सबसे पहला ज़्यादा करना पड़ता है जो रियल में आपको पहले ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे आएँ और फिर आप टाइम देख रहे हैं कि साहब 5 बज गया, 6 बज गया या 8।

0: इसमें टाइमिंग की कोई लिमिट?
1: कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको छुट्टी भी 10 बजे होनी है या 10 बजे आपने सोचा या किसी से कोई इंतजार कर रहा है और 10 बजे कोई गेस्ट आ गया तो आप छोड़ के नहीं जा सकते।
0: बिल्कुल
1: 12 भी बज जाएगा, कभी आपको थोड़ा पहले भी टाइम मिल जाएगा। तो इसमें आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए। दूसरा, आदमी को थोड़ी परवाह भी होनी चाहिए। अगर एक दिन गया एक दिन नहीं गया, सरकारी नौकरी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर सरकारी नौकरी भी होती है होटल में तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उसकी हैं।
0: बिल्कुल।
1: वो बाहर की तरह नहीं कर सकता। होटल में अगर करना है तो आपको सब कुछ मिलेगा, पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको कंपनी

0: सरकारी नौकरी भी होती है होटल में, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उसकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो बाहर की तरह नहीं कर सकता। होटल में अगर करना है तो आपको सब कुछ मिलेगा, पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको कंपनी जूते भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है, और सुविधा खाने पीने की भी देती है, चाय पानी की भी देती है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपसे उतनी उम्मीद भी रखती है कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। तो ये सभी करना पड़ता है और करना चाहिए भी।
1: बिल्कुल,
0: हम नए लोगों से ये कहना चाहेंगे, जिनको भी
1: नौजवानों को आप यही मशवरा देना चाहेंगे?
0: हाँ, ये मशवरा देना चाहेंगे कि अगर जो उनको किचन में आने का शौक है, क्योंकि होटल में तो कई डिपार्टमेंट हैं,
1: बहुत डिपार्टमेंट
0: यहाँ मेंटेनेंस भी है, और यहाँ पे एफ एंड बी सर्विस भी है, प्रोडक्शन है किचन में भी है, तो किचन को प्रोडक्शन कहते हैं
1: जी।
0: जो आदमी किचन में आना चाहता है, मतलब प्रोडक्शन में करना चाहता है, ज्यादा नॉलेज हम तो उसी के रखते हैं
1: जी।
0: और हम उसके लिए एडवाइस बता कर सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे अच्छा किचन ही लगता है। हाँ, किचन में ही लगता है, और एक तरीके से कहा जाए तो किचन को होटल का बैकबोन भी मानते हैं।
1: सही बात,
0: क्योंकि किसी भी होटल में जाएं आप तो सोचेंगे इसका खाना कैसा है, चलो खाना खा के देखते हैं, या अगर आपको खाना उसका पता है कि अच्छा है तभी आप जाएंगे, और आपको पता है कि बेकार है
1: तो क्यों जाएंगे।
0: तो इसलिए आप खाना खाएं ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन अब नाम तो खाने के सुन के जाते हैं।
1: बिल्कुल, खाने के
0: नाम सुन के जाते हैं,
1: उस होटल में जाओ यार ये चीज़ दाल
0: बढ़िया मिलेगी। यही वजह है कि जो हमारे वहाँ पलकनुमा में
1: जी,
0: आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। अगर आप कहें साहब हमको 10 लोगों को आना है, तो हमारे पास टेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले बुक हो जाती है 5-7 बजे से पहले ही पहले।
1: अच्छा,
0: 7 बजे पहले बुक करना,
1: फोन कॉल पे बुक होता है,
0: बुक का कोई पैसा लगता नहीं है।
1: अच्छा,
0: बस आपको पहले से बुक कराना पड़ेगा, उससे लिए आपको टेबल खाली मिलती है।
1: अच्छा,
0: और नहीं तो फिर
1: हम डायरेक्ट आए तो मुश्किल हो गया। अगर
0: हाँ, मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी तो मिल जाएगी
1: जी,
0: पर कभी कभी ऐसा भी होगा अब वेट करना पड़ेगा। अक्सर ही ऐसा हो जाता है, वेट करना पड़ता है एक मंगल को छोड़ के, क्योंकि मंगल को लोग, एक गजल भी नहीं होती, तो मंगल को कम लोग भी आते हैं, जिनको ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए ऐसे लोग आते हैं। तो हम लोगों का काम तो हो ही जाता है, ऐसे लोग बहुत हैं जिनको शोर शराबा नहीं चाहिए, बाकी सब दिन होता है। हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को किचन में आना है वो लोग घर से तैयार हो के आए, ये हमको ज्यादा मेहनत करनी है और शेफ बनना है। तो ऐसा नहीं है कि वो शेफ बनना भी बहुत कठिन बात नहीं है, बन जाएंगे, पर यह कड़ी मेहनत चाहिए। ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं, ये सोच के आए कि हम 10 घंटे भी कर लेंगे और 12 घंटे भी कर लेंगे, तो 10 घंटे 12 घंटे भी करें,
1: टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये कह सकते हैं।
0: क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो अपना पूरा काम कर नहीं पाएंगे,
1: बिल्कुल।
0: होटल क्या होता है, सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है,
1: बिल्कुल सही बात,
0: और रात को 12 बजे तक चलता है, ये तो नॉर्मल है। वैसे तो 24 घंटे चलता है, हमारा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है जो लोग 24 घंटे चलता है,
1: लोग रहते भी हैं
0: 24 घंटे चलता रहते भी हैं,
1: बिल्कुल सही बात।
0: जनरली वैसे ब्रेकफास्ट चलता ही है,
1: बिल्कुल,
0: तो ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ती है, ड्यूटी ज़्यादा करिए
1: जी। आपके करियर का कोई ऐसा यादगार तजुर्बा जो हमारे सामने को आप शेयर करना चाहेंगे?
0: हाँ, तजुर्बा हमने कई लोगों से, यहाँ हम रेस्टोरेंट मिल चुके हैं कई सेलिब्रिटी।
1: अच्छा,
0: हाँ, जिसमें से हमको एक खास लगता है, एक मैडम आई क्या है अभी, वो शिल्पा सेट्टी।
1: अच्छा अच्छा,
0: नाम सुना होगा आपने
1: जी, हीरोइन है।
0: तो वो उनको खाना खिलाने के लिए बैठाया हमने
1: जी,
0: उन्होंने बोला आपका, हमको गोश्त फलनवा पसंद है।
1: अच्छा,
0: और बहुत पहले आए थे यहाँ और आज वही खाना है उनको।
1: अच्छा,
0: ठीक, खिलाया उनको गोश्त फलनवा। खाने के बाद, ये तो बहुत लोगों के साथ में हुआ है, कई लोगों को हम खिला चुके, पर उनके साथ याददाश्त इसलिए है क्योंकि उसके बाद जब हम उनसे मिलने गए, कहने लगे हम तो इंतजार करते, उनका एक बेटा है वो भी साथ में था, हस्बैंड भी थे, 3 लोग थे, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए।
1: अच्छा,
0: हाँ, गोश्त फलनवा हमको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने खुद हमको बोला कि आपके साथ हमको एक फोटो खींचनी।
1: अच्छा अच्छा,
0: फोटो है हमारे पास अभी भी कहीं।
1: अच्छा, बहुत खूब,
0: तो ये यादगार है। और एक वो आती है मालिनी अवस्थी।
1: अच्छा,
0: वो भी जब आती हैं
1: तो
0: अभी भी
1: यही आती है,
0: हाँ, तो फलनवा ही आती है।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा, बहुत से गेस्ट हैं जो फलनवा में ही आते हैं
1: जी जी,
0: लेकिन वो लोग आएंगे यहीं,
1: आएंगे ही,
0: यहाँ पलनुमा ही आएंगे,
1: पलनुमा ही आएंगे,
0: उनको आप रास्ते में रोक नहीं सकते।
1: आखिर में हमारे सामान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: आजकल के खाने, देखिए खाने सब अच्छे हैं
1: जी,
0: लेकिन आजकल के जनरेशन को तो खाने वही पसंद आते हैं, हम अपने घर में भी देखते हैं
1: जी,
0: छोटे बच्चों को मैगी चाहिए, मगर हमारे ख्याल से तो वो खाने खाने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हो। मैगी ठीक है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि सेहत के लिए बहुत बढ़िया होगी,
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल,
0: क्योंकि उसमें क्या क्या पड़ा है ये हमको खुद नहीं मालूम। हम जो खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या पड़ा है ये हमको मालूम, घर में आपकी मदर खाना बनाती हैं उसमें क्या क्या पड़ा है उनको मालूम है,
1: बिल्कुल,
0: और वो क्या क्या अपने बच्चे को खिला रही हैं ये उनको मालूम
1: है,
0: तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगी जिससे वो नुकसान करें। खाना तो घर का ही अच्छा होता है। आजकल के लोगों को हम तो वही बताएंगे, खाना

0: वो खाएं जो उनको खुद मालूम हो इसमें क्या क्या होता है,
1: क्या होता है बिल्कुल।
0: अब किसमें पता ही नहीं क्या क्या होता है, जैसे बाजार में तमाम सॉस आते हैं, उन्होंने बोतल उठाई और डाल दिया
1: बिल्कुल।
0: उस बोतल में क्या है बनाने वाले को भी नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम बिल्कुल,
0: क्योंकि उसको मालूम ये व्हाइट सॉस है डाल दिया, ये रेड सॉस है डाल दिया। रेड सॉस में टमाटर कितना है और कद्दू कितना है कि नहीं है ये भी पता नहीं
1: बिल्कुल।
0: तो फिर आपको वही खाना चाहिए जो आपको मालूम है, खाना आप कुछ भी खाएं सब अच्छा है। और जो पुराने खाने हैं जैसे कि हम लोग जो मुगलाई खाना है आपको, तो आप गोश्त फलनवा खाइए, हांडी चिकन खाइए, पराठा खाइए, सीरमाल खाइए, बिरयानी खाइए, बहुत कुछ खाने के लिए है। वेजिटेरियन खाना है तो आपको सब गिलावट खाइए, पनीर अफगानी खाइए, आलू खाइए, तंदूरी आलू खाइए, तंदूरी पराठा खाइए, आलू पराठा खाइए, पराठा दही खाइए, खाने लिए भी बहुत कुछ है। पर मेन कहने का मतलब हमारा यही है कि आपको वो सब खाने चाहिए जिसमें आपको पता है कि इसमें क्या है,
1: क्या है।
0: अब आपको पता ही नहीं है क्या है, खाने चले गए फिर आप कहेंगे हमारी गैस बन रही है या हमारा पेट दर्द हो रहा है, वो होने के पूरे चांस रहते हैं।
1: बहुत शुक्रिया सामाई, ये थे भीकम प्रसाद शेफ साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और खानों की दुनिया से मुतालिक दिलचस्प मालूमात हमारे सामाईन तक पहुंचाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामाईन, उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से उर्दू प्रोग्राम, आज की पेशकश थी जायका।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, सुबह के 9:50 और 12 सेकेंड हो चुके हैं और अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े लोक परंपरागत गीतों की ओर। कार्यक्रम है लोक रंग। तो आज हमारे कार्यक्रम में अवधि माटी की खुशबू फैलाने आ रही हैं डॉक्टर शिखा भदौरिया। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया देवी गीत।

ओ मैया तुमरा बगीचा लौंग का। डॉक्टर शिखा भदौरिया की आवाज में अभी आपने सुना ये देवी गीत, और कार्यक्रम लोकरंग में इन्हीं का गाया। अब आइए सुनते हैं नक्कटा।

जी हाँ, डॉक्टर शिखा भदौरिया की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत, ये नकटा भी सुना अपनी लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी के साथ लोक परंपरागत गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। श्रोताओं, सुबह के 10 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो चलिए सबसे पहला गीत आपको सुनवाते हैं, जिगर फिल्म से समीर का लिखा हुआ, आनंद मिलिंद का संगीत है और आवाज़ है उदित नारायण के साथ साधना सरगम की।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब ये गीत आइए आपको सुनवाते हैं चाहत फिल्म से कुमार सानू की आवाज में। बोल है निदा फाजली के और संगीत है अनु मलिका।

0: तो श्रोताओं, कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब चलिए आपको लिए चलते हैं न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण की ओर, जो कि अनुप्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के कार्यान्वयन से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अमेरिका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान में निरीक्षण करेगी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार पहला भूकंप सैन फिलिप क्षेत्र में आया, जिसके केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.9 थी। जापान के मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में था। टोक्यो में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही किसी के हताहत होने की खबर है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूकंप के मद्देनजर एक कार्य दल का गठन किया है। विभाग ने और भूकंप के झटके आने की आशंका व्यक्त की है। प्रधानमंत्री सनाई ताकाइशी ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

0: उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपू लेक दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपू लेक दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपू लेक दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता मजबूत करना है, ताकि कोई भी प्रतिद्वंद्वी, संकट या व्यवधान अमेरिका के प्रमुख हितों को प्रभावित न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के

0: मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको ने आज सुबह मैक्सिको सिटी में चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच जीतकर पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश 4थे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अमल से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और श्रोताओं, सुबह के 10:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे सुहानी मनभावने नए नए फिल्मी तराने। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।
3: तू लव करती है ना मेरे से? बस लव है तो सब है।

0: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से OB रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर हर दिन शाम 5:45 पर। रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत अब चलिए आपको सुनवाते हैं नए फिल्मी तराने। अभी आप सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज़ में। तनिष्क बागची का लिखा गीत है और तनिष्क बागची का ही संगीत है। फिल्म है शेरशाह।
3: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने और फिल्म थी स्त्री 2।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से और हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मी तराने। तो चलिए गदर 2 फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं आपको मिथुन और अरिजीत सिंह की आवाज में।
2: तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे।

सईद कादरी की रचना अभी आप सुन रहे थे मिथुन और अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत था मिथुन का और फिल्म थी गदर 2। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नए फिल्मी तराने। तो लीजिए आप सुनिए शादी में जरूर आना, इस फिल्म का ये गीत यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज में। गीत और संगीत है आर्को का।

सचिन जिगर की बनाई तर्ज पर अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रही थी अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज में। फिल्म थी जरा हटके जरा बचके। जी हाँ, आकाशवाणी लखनऊ से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट से ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नए फिल्मी तराने। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं रुस्तम फिल्म से, मनोज मुंतशिर का लिखा है ये गीत, संगीतबद्ध किया है आरको ने और आवाज़ है आतिफ असलम की।

आरकू की बनाई तर्ज पर मनोज मुंतशिर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। आतिफ असलम की आवाज में फिल्म थी रुस्तम। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं धुरंधर फिल्म से। गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने।

श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं।

जी हाँ, हवा के चलने का और घटाओं के घिरने का हम सबको हो रहा है बेसब्री से इंतज़ार। पर कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के लिए आपकी कॉल्स का अब हमें है इंतज़ार। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825 और कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे।

0: हाँ, तो हमारी पहली कॉलर अब हमसे जुड़ चुकी हैं और आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: फूल बनकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी मुरझाते नहीं।
0: जी
1: फूल बनकर फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी मुरझाते नहीं। बस जाते हैं वो मेरे दिल में आकर, जो दिल से कभी जाते नहीं। हाय मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने बोली कि दिल से में जो लोग बस जाते हैं वो जाते नहीं हैं, है ना। तो आप
1: जी
0: अपना
1: बिल्कुल
0: नाम बता दीजिए। पूनम जी, हम तो आपका नाम बता दे रहे हैं लेकिन आप अपना पूरा परिचय
1: मैं
0: दे
1: पूनम बोल
0: दीजिए।
1: रही हूँ, शिखा मैम और
0: जी
1: सभी सुनने वालों को बता रही हूँ कि मैं पूनम कानपुर से बात कर रही हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग है। और मैम बताएं कैसी हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं और आप अपना हाल बताइए।
1: मैम मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आकाशवाणी लखनऊ में कॉल लग गया और पहला कॉल लग गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि
0: जी
1: जब पहला कॉल लगता है कार्यक्रम में तो पूरा आनंद आता है और कार्यक्रम शुरू

0: लेकर अंत तक सुनने को मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो पूनम जी आनंद को और बढ़ाइए और बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
0: गाना तो मैं बता देती हूँ, आज मुझे करिश्मा कपूर पर फिल्माया हुआ गीत सुनना है, आज उनका जन्मदिन भी है और मैम आज बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनने वाले हैं हम सब आकाशवाणी लखनऊ में।
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे ये गीत सुना दीजिएगा, फिल्म का नाम दुलारा, गीत बोल तुम्ही से तुम्ही को चुरा लेंगे हम, और ये गीत आपको डेडिकेट है। मेरी दोस्त रिंकी पिंकी जी है, गुंजन तिवारी जी, अनु पांडे जी है और समा परवीन जी है, साथ साथ भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी है, सुनील कुमार जी है और राजन गंगवार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं।
1: पूनम जी लिस्ट बहुत लंबी है आपकी,
0: सभी श्रोताओं को जितने श्रोता लाइव सुन रहे हैं सभी को सुनाना चाहते हैं।
1: तो चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: ओके मैम, बाय बाय।

0: कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि जब भी वो हमें कॉल लगाते हैं तो प्लीज़ रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें और किसी शांत जगह पे जाके बात करें, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है तो हमें सुनने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हमारे साथ लाइन पर हैं रमेश चंद्र जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो
1: जी,
0: रमेश चंद जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
0: जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो कुछ कहना है आपको?
1: हाँ जी। मैं दिव्यांग आदमी हूँ और छोटी सी किराने की दुकान कर रखा है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छे से आपकी दुकान चले। और आप कहाँ से बोल रहे हैं जरा हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए।
1: हम बोल रहे हैं रमेश चंद साहू, सकूलपुर, जिला फतेहपुर, थाना हुसैनगंज।
0: जी तो अब गाना भी बता दीजिए कि कौन सा सुनवा दें आपको।
1: गाना मुकद्दर का सिकंदर का कोई भी गाना सुनवा दो।
0: चलिए हम आपको आपकी पसंद का जो गीत आपने बताया है वो हम सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक बिल्कुल नए कॉलर राजकुमार जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो
2: जी मैम।
0: जी राजकुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सबको बताइए।
2: मैम चिन्हट बाजार से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, चिन्हट बाजार से राजकुमार जी बोल रहे हैं और आज आपका पहली बार फोन लगा है।
2: जी
0: आवाज मेरी थोड़ा सा आप अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए।
2: जी मैम कम कर।
0: जी हाँ, और बताइए राजकुमार जी क्या करते हैं आप।
2: मैम मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है, वहीं बैठता हूँ।
0: अच्छा, तो इस समय शॉप खुल गई होगी।
2: जी मैम।
0: जी चलिए बहुत अच्छा है, आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीते। और बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
2: मैंने बताया तो आपसे दस्तूर फिल्म का गाना सुनना है।
0: जी आप बताते तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे सारे श्रोताओं को आप बताइए, है ना।
2: जी मैम।
0: जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ अगर कोई नए कॉलर भी जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे। आइए करते हैं हमारे एक कॉलर से बात, जिनका नाम है रेहाना। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताइए क्या हाल है रेहाना जी?
1: बहुत अच्छे हैं मैम।
0: अच्छा, और क्या हो रहा है, क्या कर रही थी इस समय आप?
1: मैं आपका बेहतरीन बेहतरीन प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: तो उसके साथ कुछ काम भी कर रही थी कि सिर्फ कार्यक्रम ही सुन रही हैं?
1: नहीं मैम, इस समय मैं कुछ नहीं कर रही थी, आपका सिर्फ प्रोग्राम सुन रही थी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: गाने के बोल है, मेरा प्यार वो है मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा।
0: अरे वाह, बहुत पुराना बहुत खूबसूरत गीत है रेहाना जी।
1: जी मैम।
0: हाँ तो चलिए सुनवा दें आपको।
1: जी मैम, मैं थोड़ा सा किसी को डेडी केयर कर लूँ तो?
0: अरे बिल्कुल कर,
1: इजाजत हो तो।
0: नहीं नहीं हमने दे दी इजाजत आपको, बताइए
1: मैम। ये जो मेरी आकाश बड़ी की जितनी श्रोता है तो वो हो गए जैसे पूनम दीदी हो गए कानपुर से, और शबनम अब्बासी, और समा परवीन, और हसीना अंसूरी, इनकी सबकी आवाज, इतनी दोस्तों की आवाज इतनी बेहतरीन, इतनी बेहतरीन, इतनी बेहतरीन लगती है कि मेरा दिल खुश हो जाता है मैम।
0: आप रेडियो तो पे ही इनकी आवाज सुनती हैं रेहाना जी ना?
1: हाँ, तो उनको आंखों से नहीं देखा लेकिन इतनी आवाज उनकी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है कि मैं उनको दिल के अंदर हमेशा बसाए रहती हूँ।
0: बिल्कुल, जितनी उनकी आवाज बेहतरीन है उतनी वो लोग अच्छी भी हैं। ठीक है, तो रेहाना जी आपको आपकी पसंद का गाना हम सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मर कर भी तुमको

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या हाल हैं आपके?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से, नाम आपने बता दिया।
0: भाई आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं तो आपकी भी आवाज़ लोग पहचानने लगे हैं।
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे जी। अब आप आकाशवाणी पे इस तरह से हमारी पहचान बताते हो ना, तो सच बता रहा हूँ दीदी, हमें काफी खुशी होती है क्योंकि एक आम श्रोता होकर हमारी मतलब आपके साथ बातचीत होती है और उसके बाद में जब आप हमें पहचानते हैं तो सच मानिएगा हमें बहुत खुशी होती है।
0: जी आप आम श्रोता नहीं, आप लोग खास श्रोता हैं हमारे, है ना?
1: जी बिल्कुल, आपसे हम खास इसीलिए बोलते हैं जब आकाशवाणी से जुड़ते हैं और नियमित रूप से कार्यक्रम सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि आप सभी श्रोताओं को मतलब मौका मिलना चाहिए कार्यक्रम में जुड़ने का, और लगन ऐसी रखना चाहिए कि आप कैसे भी भीड़ हो या कैसे भी मतलब कार्यक्रम में मतलब काम करता हो फिर भी आप कोशिश करके फोन लगाओ, तभी आपके सच्चे श्रोता मतलब कहलाओगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम सिंह जी बता दीजिए कि कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
1: जी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, गीत फिल्म का ये गाना है।
0: जी जी बहुत खूबसूरत गीत है ये, और आनंद लीजिए इसका। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।

0: और अब हमसे बात करने के लिए आ गए हैं जितेंद्र पाल जी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जितेंद्र जी, क्या हाल हैं आपके?
1: जी मैम बढ़िया हैं।
0: बढ़िया हैं। कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए सबको।
1: जी हम फतेहपुर जिले से बोल रहे हैं।
0: जी फतेहपुर में क्या हाल है, कैसा मौसम है?
1: जी मौसम तो यहाँ कभी धूप निकलती है और कभी छाँव होता है, ऐसे करके चल रहा है मौसम।
0: चलिए धूप छाँव का खेल चल रहा है तो थोड़ा आराम मिल ही रहा होगा आपको।
1: जी।
0: तो आप बता रहे थे कि आप दुकान पे बैठे हुए हैं।
1: जी हम किराने की दुकान करते हैं और आपके कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, कॉल भी लगा रहे थे और कॉल भी लग गई।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनवा दें आपको।
1: मन जी मूवी रहेगी किस्मत और गाने के बोल रहेंगे तेरे किस्मत में लिखा है मेरा प्यार, ऐसे करके गाने के बोल है। और मैम जी कुछ नाम ले लें?
0: अच्छा जल्दी से ले लीजिए फिर।
1: सबसे पहले तो आप हैं और दीप्ति मैम हैं और पूजा विमल मैम हैं और दिनेश चंद्र द्विवेदी जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, मैं फूलचंद पाल जी हैं, ओमकार भाई हैं, सुनील भाई हैं, पिंकी तिवारी जी हैं, दिनेश पाल जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं और मैम जी जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों
0: सभी के लिए। जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं चांद मोहम्मद जी। हेलो।
1: हेलो दीदी जान, कहते हैं गुड बाई, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम और इलू इलू।
0: अरे नमस्ते नमस्ते, आप बताइए।
1: और दीदी जान मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक बाटा से बोल रहा हूं और कह रहे हैं कि चांद की तरह चमकती रहे, सूरज की तरह दमकती रहे, और मोर की तरह छिड़कती रहे, और सावन की तरह बरसती रहे। मेरी दुआ है परवरदिगार से कि आप हमेशा मुस्कुराती रहे, बाहर आती रहे आप आकाशवाणी लखनऊ में।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी लखनऊ में हमेशा बाहर आती रहेगी, क्योंकि आप जैसे श्रोता जो हैं हमें कॉल करते रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं।
1: जी दीदी जान बता दूं, आकाशवाणी लखनऊ जैसे मैंने कहीं आकाशवाणी नहीं सुना, ऑल वर्ल्ड में नंबर वन है। और बात ये है, इतनी गैदर मची रहती है, इतनी भीड़ श्रोताओं की मची रहती है कि हमें फोन लगाना दुश्वार हो जाता है, और हम लाइन में खड़े खड़े बड़ी मुश्किल में टिकट मिलती है, जैसे टाकीज में लाइन लगानी पड़ती है।
0: लेकिन चांद मोहम्मद जी, आपको टिकट मिल जरूर जाती है, ये मत कहिए।
1: टिकट आज जल्दी मिल गई है दीदी जान, और आपकी भाभी जान ने फोन लगाया है, जामुन अभी झोल रही थी पेड़ में।
2: नमस्कार दीदी जान।
0: जी नमस्ते नमस्ते, और बताइए
2: दीदी जान आप कैसी हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, और आपको गाना सुनवाना चाहते हैं तो अपना गाना बता दीजिए।
1: गाना बता रहे हैं दीदी जान, और जल्दी फोन नहीं काटिएगा, एक लाइन दोनों लोग गुनगुना लें तब तो मजा आएगी आकाशवाणी लखनऊ में, और प्रेम दास बाबा जी के साथ सभी श्रोताओं के साथ, और पूरे ऑल वर्ल्ड के श्रोता मेरे मित्र हैं दीदी जान। मैं बता दूं, किसी का नाम नहीं लूंगा।
0: हाँ हाँ, चांद मोहम्मद जी जल्दी, अरे जल्दी से आप गाना तो गुनगुनाइए।
1: फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान, और गीत के बोल हैं, तेरी जिंदगी की रागिनी पर

0: चलिए नमस्ते,
1: दीदी
0: आपका नाम लिख गया। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
2: जी। दीदी जान गुनगुना लेते हैं तो लफड़ा नहीं होता, नहीं तो
0: जी
2: आपकी भाभी जान नाराज हो जाती
0: नहीं
2: है।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल नाराज मत होइए और सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं फूलचंद जी। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ फूलचंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: शिखा जी, बहुत
0: जी
1: बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्रोताओं को बता दूं, आपने तो नाम बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं
0: बिल्कुल
1: कि श्रोताओं, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: और बताइए कि आपकी तरफ मौसम कैसा है, धूप छांव का खेल चल रहा है कि धूप ही धूप निकली है?
1: शिखा जी, ये इतना प्यारा मौसम है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में, काले काले बादल हैं और बड़ी है, मंद मंद हवा चल रही है।
0: अरे वाह वाह वाह, थोड़े से बादल लखनऊ की तरफ भी भेज दीजिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बादलों से यही कह रहे हैं कि आप लखनऊ की तरफ जाइए, वहाँ का जम के बरसिए पानी लखनऊ में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप
1: और हमारी सखा दीदी जब घर जाए तो भीगती हूँ यहाँ। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए फूलचंद जी, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: शिखा जी, ऐसे में जब प्यारे प्यारे काले काले बादल चढ़े हैं और जो है मंद मंद हवा चल रही हो, तो फिर तो मन बार बार मचल रहा है।
0: हाँ।
1: कि ऐसा ही एक गीत है, बहुत प्यारा गीत है, लता जी की आवाज है, फिल्म का नाम है गजब
0: जी,
1: और गीत के बोल है कि ए हवाए बता क्या तुझे है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। ये गीत
0: आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया फूलचंद जी।
1: और
0: जी
1: शिखा जी, ये गीत जो है सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल मणिराम पाल जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं बहेरी ग्राम से, और जयपाल सिंह यादव जी हैं
0: फूलचंद जी,
1: कानपुर से पूनम यादव जी हैं, और बस थोड़ा सा राहुल कुमार जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, बहुत सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा, और राजू यादव जी हैं।
0: हाँ आप अपने सभी ऐसे बोल दिया करिए कि ये गीत हमारे सभी रेडियो मित्र को डेडिकेट रहेगा। ठीक है
1: बिल्कुल, जितने श्रोता सुन रहे हैं
0: सबके लिए। तो चलिए सुनिए अपनी पसंद का गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं गजराज जी। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है गजराज जी आपका।
1: आपको भी हम
0: जी का,
1: साहब
0: हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा कोला गाँव से, जिला हरदोई, तहसील संदीला।
0: जी जी, और गजराज जी क्या करते हैं आप?
1: जी
0: हेलो। हेलो जी गजराज जी,
1: तो 50 साल से रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, बहुत पुराने आप श्रोता हैं हमारे। तो बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको? आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है?
1: आवाज आपकी कम आ रही है।
0: मेरी आवाज पूरी जा रही है कि आपकी तरफ से थोड़ा सा शोर है, हवा का है, चल रही है आपकी तरफ, क्या या आप कहीं और रहे?
1: तो हमको भी सुनने में डिस्टर्ब होगा क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया, 80 साल उम्र हो गई।
0: चलिए, 80 साल कोई उम्र होती है? अब तो आपका आपका एंजॉय करने का समय आया है लाइफ को, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे कार्यक्रम सुनते रहें। तो बता दीजिए कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
1: ठीक है
0: जी गजराज जी। हेलो गजराज जी, तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो उन्होंने हमसे फरमाइश करी है गंगा जमुना फिल्म का गीत सुनने की, दो हंसों का जोड़ा।
1: आवाज आपकी हमको पूरी नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं, हम आपको आपकी पसंद का गाना सुनवा दे रहे हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं हमारे नियमित श्रोता केसरी सिंह जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, और बताइए।
1: बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बहुत स्वागत है आपका केसरी सिंह जी, और बताइए क्या हाल है आपके।
1: बहुत बढ़िया हाल चाल है दीदी, बस हल्की हल्की बारिश हो रही है और बदल भी हो रहे हैं और दो तीन रोजों से पानी गिर रहा है, कुछ गर्मी
0: कम हो गई है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा मौसम आपकी तरफ चल रहा है। और बताइए उस मौसम का आनंद लेते हुए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: जब दो दिल मिलते हैं कुछ वादा करते हैं,
0: अच्छा।
1: हम वादा कम करते हैं प्यार ज्यादा करते हैं।
0: चलिए तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ दीदी, प्रस्तुति आपकी बहुत बढ़िया लग रही है, दो चार मित्रों को याद करना चाहूंगा इजाजत।
0: आप लोग के दो चार मित्रों की लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाती है।
1: नहीं, चार चार या पांच ही लूंगा बस।
0: चलिए जल्दी जल्दी ले लीजिए।
1: राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी हैं और रमेश प्रजापति जी, और आप सुनेंगे।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के हमारे अंतिम कॉलर हैं दिनकर सिंह जी। हेलो।
1: सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार बहन जी।
0: दिनकर जी, बहुत अच्छी लाइनें आपने कही और देश के प्रति आपकी इस भावना को हम बहुत उसका सराहना करते हैं कि इस तरह के भाव हम सबके मन में होने चाहिए, है ना
1: जी? जी। और जली को आग कहते हैं और बुझी को खाग कहते हैं, और जो आपसे दीदी जी रूबरू हो रहे हैं उन्हें मिस्टर दिनकर सिंह उस्ताद कहते हैं, मिस्टर दिनकर सिंह उस्ताद कहते हैं।
0: हाँ, तो दिनकर सिंह उस्ताद जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सबको ये भी बता दीजिए।
1: चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से। इस समय मैं महुआ के पेड़ के नीचे से बात कर रहा हूँ। मेरे सामने बब्बू वर्मा और रिंकू जो है पूर्व प्रधान के बेटे बैठे हुए हैं, चार भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। और वहीं से मैं बात कर रहा हूँ, बहेरी ग्राम से।
0: जी जी, चलिए आप सब लोग मुस्कुराते हुए बताइए कि कौन सा गाना आप सबने आज चुना है सुनने के लिए।
1: मैं, मेरा गाना है फिल्म निगाहे का, सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो प्यार कब करोगे, रात में तुम आराम करोगे तो प्यार कब करोगे। और ये गाना हमारे बेरिकेट रहेगा, हमारे मांगी लाल चंदेल जी हैं, बेटा सिंह जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं और विजय पांडे जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं।
0: चलिए, तो दिनकर सिंह जी, सुनवा दिया जाए आपको आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की 747 किलो हर्ट्ज पर, और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों

0: की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात? सच में श्रोताओ, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओ, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ।

करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे।

0: वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का

0: प्रतिफल है
1: जी
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किस

0: तुमसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिल की आवाज़ बने नगमों को हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में, और कार्यक्रम का आगाज करते हैं जानवर फिल्म के इस गीत से जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत से इस गीत को संवारा है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज़।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है ठोकर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत की धुन बनाई है श्याम जी, घनश्याम जी ने, और गीतकार हैं साजन दहलवी।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत मदन मोहन का, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की।

आप सुन रहे हैं गीत फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का बोल, हसरत जयपुरी के।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 5

170 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। दीपक गुप्ता निवासी मोहल्ला आतिश बाजान, पोस्ट कटरा, जिला शाहजहांपुर ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी राखी दिनांक 5 जून 2026 से लापता हैं। राखी की आयु 26 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला, दुबला पतला शरीर व चेहरा गोल है। गुमशुदगी के समय इन्होंने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9250949815। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9250949815। रमेश चंद्र निवासी मोहल्ला बगिया थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर ने सूचित किया है कि राधा दिनांक 25 सितंबर 2025 से लापता हैं। राधा की आयु 17 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है। इन्होंने सलवार कुर्ता पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 7232908813। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 7232908813। छंगा लोध निवासी बिरौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी सुनीता उर्फ जुगरती दिनांक 17 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सुनीता की आयु 45 वर्ष, रंग 5 फीट 1 इंच, कद 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, मजबूत शरीर है। गुमशुदगी के समय इन्होंने लाल रंग की सुनहरी साड़ी पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 7080453933। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 7080453933। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने के हैं। कुछ ही देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद आइन और जमहूरी इकदार के तहफ़ की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इमरजेंसी के 51वीं बरसी के मौके पर संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा,
2: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है, योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना, परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राममोहन रायडू ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से पहली EZ कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट भारत के कोने कोने को दुनिया से बगैर किसी रुकावट के जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत मुसाफिर अपनी आखिरी बैनुल अक्वामी मंजिल के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरी कर सकते हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भारत में किस शहर में रहते हैं, आप अपने बैनुल अक्वामी सफ़र का आगाज़ अपने शहर से ही कर सकते हैं।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को ये हब एंड स्पोक मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी यही इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। हवाई यात्रा या एयरपोर्ट आने से आपको पता है किस तरह से वो शहर को एक ताकत मिलती है, वो छोटा शहर नहीं रहता उसके बाद।
1: LDA ने लखनऊ के अलीगंज आतशजदगी मामले की महकमा जाती जांच करके कसूरवारों की शनाख्त कर ली है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी उसका नक्शा 2014 में मंजूर किया गया था। इसके बाद 2016 में LDA ने मेयार पर पूरा ना उतरने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। महकमा जाती इंक्वायरी में 19 इंजीनियर्स और 6 PCS सतह के अफसरान की जानिब से गफलत पाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आग में ज़ख्मी होने वाले 7 अफराद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इलाज के बाद फारिग कर दिया गया। दरियां असना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम रियासत भर में कोचिंग इदारों की मुसलसल जांच कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि मुआयने के दौरान 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या इंतजामिया ने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुआयना करने के लिए 2 टीमें तश्कील दी हैं, जो न सिर्फ फायर सेफ्टी की जांच कर रही हैं बल्कि लोगों में बेदारी भी पैदा कर रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो धनघटा तहसील के बांसवाड़ी में वाक़े श्री बैजूनाथ धाम में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 139 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को रजामंदी दे दी है। रियासती हुकूमत में वजीर ममलकत कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS को कॉरिडोर मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई सिमत दिलाने वाला दूरंदेश कदम साबित होगा। महकमा मौसमियात ने कल से रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने 28 जून तक मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान है। भारत में ताजिकिस्तान के सफ़ीर बोबोल

0: काली नजदान ने कल रामपुर में रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहां महफूज शुदा नादिर नुस्खे हिंदुस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका सकाफती विरसे को समझने के लिए बहुत अहम हैं। रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर पुष्कर ने कहा कि ताजिकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती और तालीमी तआवुन को फ़रोग़ देने के लिए जल्द ही एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम के सभी श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी की ओर नमस्कार। आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होइयो, यह कामना के साथ आप सबके स्वागत कर रहे हैं आज के घर अंगनामा। मैंने देखो हम सब जौन है एक दूसरे के खुशहाली के सुखी जीवन केयर कामना करी थन और जौन हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वह हमका यह आशीष भी दे थन। जब कहो देखो उनका पाँव पाए लगी करो तो क्या कहिए भाई, खुश रहो, हाँ स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, यह तो कहते हैं। लेकिन स्वाचे वाली बात यह है कि इतनी निकी निकी आशीष दे के बाद भी, इतनी अच्छी कामना करे के बाद भी, आज बहुत कम ऐसे लोग मिली हैं जौन या कहें कि हम अपने जीवन में सुखी हैं। पता का है कहे कि सुखी जीवन क्या मतलब होते संतुष्टि है, और हमारे पास जौन कुछ है हम वही माँ अगर संतुष्ट रही तब है हमारा जीवन जौन है सुखी बन सकत है। लेकिन हुआ का है कि हम हमेशा जौन है शिकायत करित रहे थे कि हमारे पास या नहीं ना, हमारे पास वा नहीं ना, या हमारे पास जौन कुछ है वही नीक नहीं ना, वही माँ या कमी है, वही माँ वही कमी है, हाँ फिर चाहे वही भौतिक वस्तुओं की बात हो और चाहे हमारे नाते रिश्ते की बात हो, हाँ हम हमेशा जौन है वही माँ शिकायत करे की कोशिश करी थन। तो देखो अगर हमका अपन जीवन में सुखी रहे का है, खुश रहे का है, तो हमका अपन यह आदत छोड़े का पड़ी और यह कोशिश करे का पड़ी कि हमारे पास जौन कुछ है, फिर चाहे वो हमारी परिस्थिति हो, फिर चाहे हमारे वो नाते रिश्ते हो, हाँ या फिर कोनो भौतिक वस्तु हो, जौन कुछ भी हमारे पास है वही का हम अच्छा मानी, वही से संतुष्ट रही। और एक उदाहरण से अगर हम समझे की कोशिश करी तो देखो जैसे कि आजकल की बात कह लो, हर गो देखो बस हाय गर्मी कह रहे हैं, लेकिन हम का भाई कहे से ऐसे बार बार शिकायत करे से बार बार रोवे से गर्मी तो कम हो ही नहीं रही है, हाँ तनिको नहीं कम हो रही, तो यही से का फायदा है। हाँ फायदा तब हो सकता है जब हम या परिस्थिति का बदले के लिए कुछ नीक प्रयास करी कि चलो भाई बिरवा लगावा जाए, हाँ और आज नहीं तो कम से कम बाद कुछ साल बाद जो है स्थिति में जरूर सुधार आई, तो एक तो यह कोशिश है। और दूसरा एक तरीका यह है कि अगर गर्मी है तो हम वही माँ भी कुछ नीक सोच ली, हाँ भाई वही माँ नीकी नीकी बातें का हो सकती हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है बढ़त भय तापमान से जो नहीं हानिकारक कीड़ा मकोड़ा है जो हमारे खेती खलिहानी का हमारे जीवन में जो नुकसान पहुंचावत हैं तो वही देखो समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और आम आ रहा है, जामुन आ रहा है गर्मी के, भाई यह फायदा है। तो कहे के मतलब है कि अगर हम अपने सोचे की दिशा तनुक बदल दें ना तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकित हन, और जब हम खुश रहबे संतुष्ट रहबे तो हमारा जीवन जो है निश्चित तौर पर सुधरी। और यह बात देखो हम अपने रिश्तन में भी कहे चाहित हन, अक्सर जब रिश्तन की बात करो तो जो एक रिश्ता होते सास ननद के रिश्ता, देवरान जिठान के रिश्ता ना, तो यही का लोग मान के चले थे कि भाई यही तो जो रिश्ता है कड़ू हो, इस बात बिल्कुल नहीं ना है। अगर हम वही माँ भी नीक नीक बात ढूंढने की कोशिश करी, मान लो हमारे सास हैं या ननद है कितनों खराब हुए लेकिन हर मनई में कुछ न कुछ तो नीक जरूर होते, कुछ न कुछ तो अच्छी बात जरूर होती, तो हमारे काम का है कि हम वही अच्छी अच्छी बातन का ढूंढी और वही का अपनाए ली है। और देखो आप देखे भी हुई हो कि घरे में जब हम पंचन सूपा पछोरी थन तो इससे क्या होते है कि जितना कूड़ा कचरा होते करकट होते सब जो उन्हें बहाए देते सूपा और नीक नीक जो बढ़िया बढ़िया अनाज होते वही का धर लेते हैं, तो यह हमका सूपा सीख भी देते है। और हमका अपने जीवन में भी यह उतारे का चाहिए कि भाई जो उन्हें सार सार का गही रहो और थोथा दे उड़ाए हैं, तो अगर यह बात का हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हर समय में अपनाए ले तो हमारे जीवन

निश्चित तौर पर बहुत सुखी बन जाई, हमारे जो रिश्ते हैं उनमें मिठास पैदा हुई और यह भाई हमका कहे का है कि हम अपने शिकायती स्वर का बदली। और ख़ास करके हम यह बात उन बेटियन से जरूर कहा चाह रहे हैं कि देखो जिनका अभिन भाई ब्याह हुआ है या ब्याह होवे वाला है तो वो एक नई जगह पे जई हैं, उनके नए रिश्ते हुई हैं, हाँ उनके संग सबके संगे सामंजस्य बिठावे का पड़ी, तो आप बस यह लेके एक गांठ बांध के चलो कि भाई जौन भी रिश्ते हैं हमारे पास में अब तो जुड़ गए हैं तो उनमें हम हमेशा अच्छा ढूंढे के प्रयास करी, बस फिर देखो आपके जीवन जो है निश्चित तौर पर सुख रही है। और जैसे कि हम बतावा देखो भाई शादी ब्याह और लगन तो शुरू हो ही चुकी है, बहुत जने के यहाँ गावन ब्याह ठना भी हुई तो जन के यहाँ नहीं भी ठना हुई तो उन्होंने सब खातिन भाई एक बढ़िया से जो है हम विवाह गीत सुनवाए रहे हैं डॉक्टर भक्ति शुक्ला बहनी के शर्मा, तो चलो आनंद लीन जाए या गीत केर

0: June is month for National Infertility Awareness. Let's listen from infertility expert.
1: Hello everyone. I am Dr. Anjali Srivastav, MBBS DGO, practicing as an obstetrician gynecologist in Farrukhabad. A voice for fertility, a voice for complete families. Every couple dreams of having a family. For many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after a year of trying, affecting one in six couples. Remember, it's never just a woman's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatment are available. It's time to break the stigma, start the conversation, and seek timely advice. Let us come together to be a voice for complete families.
0: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह!
6: फसा! अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: और श्रोता बंजू, देखो जैसन कि हम कहा कि जौन भी परिस्थिति हमारे पास है, वैसे शिकायत करे के बजाय वही का खुशी खुशी अगर अपनाए लीन जाए तो जीवन सुखमय हो जाते। तो यह पर केंद्रित एक बिटिया की कहानी जौन की शहर में पली बड़ी रहे, मगर वही का ब्याह जौन है गाँव में भवा। तो वही जैसे शिकायत नहीं करीस, बल्क वही माँ अच्छाई ढूंढिस और गाँव में रह के निर्णय लीन। तो यह ताना बाना पे कुछ बुनी भई कहानी आज हम अपने श्रोता पंचन के लिए लेके आए हैं। और यह कहानी है शारदा शुक्ला बहनी के। तो चलो पहले कहानी सुन ली जाए, शारदा शुक्ला बहनी की कहानी ग्राम वासिनी। तो आप सब भी ध्यान से सुनियो ये कहानी।
9: अरे बिटिया, कहाँ खोई हो? चाय सब धरे धरे ठंडाए गए, लाओ दूसर बना लाई। बुआ की आवाज कानन में परी तो हम अपने ख्यालंते बाहर आई। वातावरण में चारों ओर संध्या सुंदरी आपन पंख फैलाए चुकी रहे। बैरवन पर चिड़िया बसेरा ढूंढे के खातिर चू चू का राग अलापी रही रहा है। सबते ज्यादा शोर आमे के पेड़ पर हुई रहा है। सामने की खाली पड़ी जमीन पर अम्मा जौन मूली पालक हरा धनिया बोइन रहा है, वह खूब सरसब झू चला रहा है। बाबूजी की नौकरी की वजह से शहर में लंबे समय से रहे के बावजूदो अम्मा बाबूजी का गवई मन अबहू गाँव में बसत है। अपने लगाए पौधन का सरसब झो देख दोनों ऐसन खुश होत हैं मानो आपन बच्चे का बढ़िया रिजल्ट देख लेने होए। ले बिटिया चाह पियो, बुआ फिर ते चाय बना लाई रहे। ये जो ज़्यादा लाड़ दुलार हुई रहा है ना, एक ही वजह हमार बियाव है, जौन अगले महीने की 15 तारीख का ठहरा है। बहुते कुसुर मुसुर के बाद हम बिहाय के खातिर हामी भरे हैं। कारण कारण यू कि लड़का है तो डॉक्टर, लेकिन उन लोगन का घर गांव में है। महतारी बाप गांव में रहते हैं। हमहू का विदा हुई के गाँव में जाए परी, जय के खातिर हम एकदम में तैयार ना हतिन। अरे दीदी कहाँ चली गई हो? कितने चावल पछोरे का परे हैं और तुम्हार तिलुआ नहीं लाग रहा। अंदर से अम्मा की आवाज़ आई तो बुआ हंसत हंसत भागी और बोली, अरे बिटिया जाई नहीं, तुम्हारी अम्मा मार डरी हैं। इन ननद भौजाई जैसन प्यार हम कहूँ नहीं देखा। देखा तो छोड़ो, सुनन तक नहीं। बुआ महीना दुई महीना की खातिर अपने गांव का चली जाए तो अम्मा बेचैन होए लगती हैं। कौ ना कौ का भेज के

ने बुलाए लेती हैं और बुआ के औते उरहना परहानी शुरू हो जात है। बड़े दिन मायु अब की दें, अब बुलाए भिजबे तभी आई हो। बुआ सफाई माँ जुट जाती हैं, कुछ कुछ परेशानी बतावे लगती हैं और अम्मा उनके खातिर नाश्ता पानी निकाले लगती हैं। इनका प्यार देख के ना कबहू कबहू बाबूहू जी ईर्ष्या कर बैठत हैं। बुआ बाबू जी की सगी बहनी नहीं है, यह बात हम पंचे बहुत बड़े हुए के बाद जाना। अंदर से सूप में पछोरी की आवाजें आए लगी, छर्र छर्र सरर सररर, छर्र छर्र सररर सररर, एक ए लय और एक ए ताल। यो संगीत हमें एक दाएँ फिर अपने ख्यालन में खींच लेगा। हम तो हमहू लोग गाँव के, तभी तो एम ए LLB पढ़े के बावजूद हम अवधि बोल लेते हैं और समझू लेते थे। लेकिन यही का यूँ मतलब थोड़े है कि हम बियाव गांव में कर लेबे। न जाने बाबूजी का सूझी कि हमार बियाव गांव में तय करियाए। हमरे होए वाले पति सुधांशु जी की अम्मा हमका एक शादी में देखे के पसंद कर लेने रहा। लड़का डॉक्टरी के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा है। गांव में खेत खलिहान कच्चा पक्का मकान है। दुई बहनी रहें, दोनों ब्याह गई हैं, कौनो जिम्मेदारी ना है। बिटिया खूब राज करियो। हमका शादी करके गांव जाए परी ई बात पर भड़की। हमका समझाए माँ अम्मा यो सब बोल रही रहें। अब बुआ की बारी रहे, कौन हमेशा गांव में रहे है। लड़का अपन डॉक्टरी गांव में तो चलाई ना, शहर में चलाई। तो जब वो शहर में रही तो तुम्हू शहर में रही हो। बहुत दिन चली रहे ये समझाहट, तब जाके हम भारी मन से हाँ बोला रहा। हम शहर में पली बढ़ी, कबहू एक रात गांव में नाए गुजारेन। कबहू रिश्ते नाते में शादी ब्याह परा तो सवेरे सब लोग जात रहें और रात होए पर घर आ जात रहें। गांव में रात का रहना, लाइट का जाना, संझा होते झिंगुर की झाए झाए, कौनो आहट होए तो अंधेरे में देखो तो जनाई पर थे लकड़बक घटाड़ है। यो सोच ही कि हमार मन घबरान लागत रहे। अम्मा के कहे पर हमारी सहेलियों लगी समझाहट करे के लिए। एक दिन संध्या आई रहें, चूहल करत भय बोली, बन्नो रानी शादी कर लो, फिर तुम्हारे रूप जाल में फंसे डॉक्टर साहब शहर तो क्या विदेश तक चले जाएंगे, गांव को कर देना हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। अब सहेलिन की बात कुछ कुछ हमरे पल्ले परन लगी रहे। अमहू का लगा चलो कौन हमेशा रहक है। कुछ दिन बाद समझा बुझा के डॉक्टरों साहब का शहर ले बे। बहरहाल यू सब सोचत सोचत हम बिहार के लिए हाँ कर दिया रहा। यह सब स्वाचत स्वाचत वहा पोहमा, कबहू खुद का समझावत, कबहू डरत, कबहू आशंका में डूबत उतरात। शादी के लिए हाँ करे के बाद धीरे धीरे समय कब बीती का पता नहीं चला और शादी का दिन आगा। गहनंत लदी फंदी रेशम से ढकी मुंदी हम ससुराल का विदा हुई गई। रास्ता माँ हम दुल्हा का देखे की उत्ती कोशिश नहीं कर रही रहन, जितना हम गांव का जाए वाली सड़क देख रही रहन। कहे से कि अब इस सड़क पर हमें बार बार आए जाए परी। सिंगल डाबर रोड पर हमार गाड़ी चली जा रही रहे। सामने से कौनो ट्रैक्टर ट्राली आवे तो हमार गाड़ी कच्चे फुटपाथ पर उतर जात रहे। सड़क के दोनों ओर लहलहात खेत भारत की खुशहाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं। हमका अचानक मनोज कुमार की फिल्में याद आ गईं। मुरैठा बांधे मनोज कुमार हल चलाए रहे हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और यो सोचते हम अपने फिल्मी मन पर हल्के से मुस्कुरा दीन। बारात एक ढाबे पर चाय पानी के लिए रुकी। डॉक्टर साहब कार से उतर के ढाबे पर चले गए। एक बुजुर्ग जी शायद डॉक्टर साहब के मामा रहें, कार की खिड़की के पास आके हमसे पूछिन, बेटा चाय कुल्हड़ में पीहो या कप में? कुल्हड़, हम धीमे से जवाब दे दिया। जवाब में कुल्हड़ बोलते है सोशल मीडिया पर चले वाली वह पोस्ट याद आ गए, जहिमा कुल्हड़ की चाय की तस्वीर के साथ लिखा रहा था कि कुल्हड़ में चाय पिए से देश प्रेम जाग जात है। कहे से कि कुल्हड़ के बहाने हम अपने देश की माटी का चूम लेते हैं। यो ख्याल अवते एक दूसरा ख्याल मन में आ गवा, देश के नाम पर हम पंच कितने स्वार्थी होथन। केवल सुख सुविधाएं हमें चाहिए होती हैं। धूल माटी अंधेरा खराब मौसम यो सब हमें नहीं चाहिए होते है। कितना अंतर है हम सबकी कथनी और करनी माँ। सड़क पर डॉक्टर साहब रिश्तेदारन से बातचीत में मशगूल हैं। अब कि दें गेहूं की फसल बढ़िया भय है, डॉक्टर साहब कह रह रहे हैं। अब पानी न बरसे बस, देखो भगवान कौनी करवट ऊंट बिठावत है। एक बुजुर्ग बोले, हम किसानन का तो सब कुछ दांव पर है। दुकानदार चाय का हिसाब जुड़ा रह रहा है, 190 रुपया की पकौड़ी भई, 200 की चाय, 250 के समोसा और 90 की बर्फी। पिताजी पैसा दे के लिए दुकानदार की तरफ जात जात डॉक्टर साहब का आखिन आखिन में कुछ कही गए। डॉक्टर साहब हाँ माँ मूड़ हिला के कार की ओर आवे लगे। हम थोड़ा और संभर के बैठ गए। डॉक्टर साहब कार के पास आकर बोले।

ए, फ्रेश होना है तो आ जाओ, आगे कहीं बाथरूम नहीं मिलेगा। अभी 2 घंटे और लगेंगे घर पहुंचने में। हम गाड़ी से उतरकर उनके पीछे पीछे चल दें। ढाबे पर रेडियो में गाना बज रहा है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जब हम घर पहुंचे अंधेरा हो चुका था। दरवाजे पर लाइट और फूलन ते सजावट की गई है। लक्ष्मी दिया जलाए खातिर माचिस लाओ, अरे रमदेई सूप लाओ, परछन करेक है, दुल्हिन उतारेक है, सफर की थकी मांदी कब तक गाड़ी में बैठ रही। सास की बोली हमरे कान में जा रही रहे। अपने लिए दुल्हिन सुनना नया अनुभव रहा है हमरे लिए। भाभी लो शरबत पी लो, ये आवाज शायद हमारी बड़ी ननद की है। दुल्हिन, भाभी, चाची, ऐसा संबोधन हमरे कानन में पर रह रहे हैं और ई सब हमें एहसास कराए रह रहे हैं कि अब हमारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। अंदर से ढोलक की आवाज आ रही रहे, आजा प्यारी बन्नो रे अटरिया सुनी पड़ी। दुआरे के रीति रिवाज खत्म होता है, हमका आंगन में बैठा दिन गा रहा है। घर माँ जब हम घुसे लगी रहन तो देखें ऊंचा सा सदर दरवाजा, अंदर बरोठा, बरोठे के बाद दलान, फिर आंगन। घर का कुछ भाग कच्चा कुछ पक्का, हमारी नजरें सब कुछ भांप रही रहे हैं। घर खूब है, बड़ा है। हम रिश्तेदार औरतों से घिरी सकुचाई बैठी रहन कि एक अधेड़ महिला हमारे पास आई के बैठी गई और हंसी मजाक करत करत हमारे पावन माँ आलता लगाए दिन। फर्राटा पंखा का मुंह हमारी तरफ घुमाए दिन गा रहा है। अरे लक्ष्मी दुल्हन का वही के कमरा में ले जाओ, बेचारी थकी मांदी है, नहा धो के आराम कर ले, सासू माँ का आदेश आया। बहुत निक भाभी, दुल्हन पर बहुत प्यार आ रहा है, हम पंचनों को तनिक ध्यान दे लो। बुआ सास ताना मारिन तो पलट के जवाब आवा जो नहले पर दहला रहा है, अरे तुम्हारे तो लाड़ दुलार अब तक हुई रह रहे हैं जज्जी, बेचारी अपन घर द्वार छोड़ के महतारी बाप छोड़ के हमारे पास आई है तो हमने दुलार करीबे तो को करी। ननद भौजाई की चुहल के बीच हमका हमरे कमरा में हमरी ननद लेके आ गई। जौन अभी तक ठीक ठाक वाली फीलिंग हती ना, वह अब थोड़ा सा फील गुड में बदल गया है। सास का नेह, ननद का सत्कार और डॉक्टर साहब का शांत स्वभाव हमें सब अच्छा लगन लगा रहा है। नहा धोए के पंखा चलाए के जो बिस्तर पर परिन तो कब सोए गईन पता नहीं चला। बाहर आंगन में बदकही से आँख खुली, घड़ी देखें तो अरे सवेरे के 6 बज गए। कौनो महिला के रोई की आवाज़ आ रही रहे, वही रो रो के कह रही रहें, भैया तनिक चले चलो, एक नज़र रिकवा का देख लो, बहुत तेज बुखार चढ़ा है, पूरे शरीर में सूजन आ गए है, पेट फूल के नमक्कड़ा हुई गए भैया, मोर विधवा का एक सहारा है, ये का कुछ हुईगा तो हम कहाँ जाइबे का करीबे। जितना हम पहचान पा रही रहन ई शायद ओ ही अधेड़ महिला की आवाज़ हती जी शाम का हमरे पायन पर आलता लगाइन रहे और खूबे आशीष दिन हिन रहे। दूधन नहाओ पूतन फलो, अपने घर माँ राजरानी बन के राज करो और न जाने का का। ओए बिचारी समय रो रो के हलकान हुई जा रही हैं, परेशान न हो महाराजन, अब अही भैया जात हैं तुम्हारे साथ, ठीक हो जाए तुम्हारी लड़का। सासू माँ महाराजन का धीरज बंधा रही रहें। फिर सुधांशु जल्दी जल्दी महाराजन के साथ घर से बाहर निकलेगी, पता नहीं रात में कमरा में आयो रहें कि नहीं। ननद जब चाय लेके आई तब पूरी बात पता चली। महाराजन घर के काम में अम्मा का हाथ बटौती हैं, उनका 13 साल का लड़का बीमार है, गांव में कोनो दूसरा डॉक्टर नहीं है, इसलिए भैया की शादी के मारे संकोचवश बोल ही नहीं रहे। लड़कावा 2-3 दिन से बीमार है, जब अब वो रात में बेहोश हुईगा तब बताएं। 10 बजे के आसपास सुधांशु कमरे में आए और बतावे लगे, बच्चा का टिटनेस हुईगा है, हफ्ते भर पहले पाँव खुरपी ते काट लेनेस रहा है, लापरवाही से शरीर में जहर फैल गया है, प्राथमिक उपचार के बाद शहर ले जाए परी। डॉक्टर साहब बोले जा रहे थे, तुम भी क्या सोचती होगी, शादी के दिन हम भागदौड़ में पड़ गए, महाराजिन अपने घर की सदस्य जैसी हैं, उनके खातिर तो सब करे परी। ना ना आप जाओ, डॉक्टर के नाते वो आपका यह फर्ज है, न जाने कहाँ थे हमरे अंदर इतनी समझ आ गए रहे। हाँ और गांव में कोई दूसरा डॉक्टर हो तो नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले डॉक्टर शहर में रहते हैं, हफ्ता में एक आध दिन आवत हैं जरा बहुत देर खातिर। यो बतावत बतावत सुधांशु कमरा के बाहर निकल गए। अगले दिन संझा बखत ई घर वापस आए, हम रसोइया माँ अम्मा का हाथ बटाए रही रहन, शादी का घर है, दोनों नंदे धरा उठाई में लगी रहें, कुछ मेहमान विदा हुई के रहें, महाराजिन के न होए से काम ज्यादा बढ़ गया है। अब लड़कावा खतरे के बाहर है अम्मा, तनिको और देर हुई जात तो अनर्थ हुई जात, सुधांशु बच्चे का हाल बता रहे थे, सीधा अपने कॉलेज लेके चले गए रहन, हुआ न हाथों हाथ सब हुईगा, पूरे शरीर में जहर।

0: फैलगा रहा है। तभी इनके कोनो डॉक्टर दोस्त का फोन आगा। डॉक्टर साहब उसे अंग्रेजी में बतियाए लगे। 2 ही दिन में हम डॉक्टर साहब के कई गुण जान गई रहन। दिल के अच्छे हैं डॉक्टर साहब, अंग्रेजी हिंदी अवधी सब बढ़िया बोल लेते हैं। जैसन देश वैसन भेस। एक बात बार बार हमरे मन में आ रही रहा है, अगर उई दिन डॉक्टर साहब गांव में न होते तो उई बच्चे का क्या होता और उकी विधवा माँ का, यो सोचते हमार रूह कांप जात रहे। तीसरे दिन महाराजी ने अपने लड़िका के साथ गांव आ गई। लड़िका अब ठीक रहे। यही बीच भैया शहर से हमें विदा करावे के लिए आ गिर रहे। सास खूब बना चुना के हमें मायके भेज दीन। गांव और ससुराल की मीठी याद लेहे हम मायके आ गए। गांव का रहन सहन अलग रहा है। सवेरे 5 बजे पूरा घर जाग जात रहा है। नहाए धोके पूजा पाठ के बाद खाना पीना शुरू होत रहे। बिजली गाहे बगाहे ही आवत रहे। कुछ काम इन्वर्टर तो चल जात रहे। बहुत बड़ा खुला खुला घर, वही की साफ सफाई माँ नौकर चाकर सब जुट जात रहे, तबहू 2-3 घंटा लाग ही जात रहे। वन रसोई माँ घर की औरतन के अलावा सिर्फ महाराजिन जा सकती रहें। बहू होए के नाते हमें सर पर पल्ला धरे खोत रहे। एक के बाद एक सब कुछ याद आ रहा है। डॉक्टर साहब की याद औते मन गुलाबी गुलाबी होए लगत रहे। एकांत के पलन माँ वही हमसे कहन रहे, शेफाली अभी मेरा 1 साल डॉक्टरी का बाकी है, इस बीच तुम 2-4 बार गांव आकर देख लो। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा न लगे तो मैं शहर में चलकर भी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन अपने गांव में ही क्लिनिक खोलने का है। सोचा है एक आध खेत बेचकर एक्सरे मशीन और कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स खरीद लूँगा, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। हम तबही से सोच में डूबी हैं। अजब हाल है हमारे देश का। सहरन में हर 1 किलोमीटर पर 2 नर्सिंग होम हैं जहाँ पैसा कमाए की होड़ लगी है। झूठ फरेब छल प्रपंच सब पैसा कमाए के खातिर चालू है। इलाज के नाम पर जुखामो हुईगा होए तो नीरे टेस्ट लिखा दिन जात हैं। मशीनन की कीमत जो वसूले का है। दूसरी ओर गांव है जहां एक डॉक्टर नहीं उपलब्ध है। रात बिरात जरूरत पर जाए तो भगवान मालिक है। लोगन का जानो मनो इसे बनेगा है, इलाज कराए का है तो शहर चलो। बुआ माँ बाबूजी सब ससुराल का हाल और हमार विचार जाना चाहत रहे। हमें गांव में कैसा लगा, परिवार वाले कैसे लगे, शायद सब कोई कौनो तूफान का इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा न हो हम बेदक जाई। हम जी मरह स्थिति में शादी के पहले रहन सब ओइका लेके बड़े चिंतित रहें। आपन सोच गलत साबित हुई गए ई मारे हम हूँ चुप्पी साधे रहन। आज संध्या मिले आई है। औते हंसकर बोली, और सुना बन्नो रानी, कब बुला रही है डॉक्टर साहब को शहर? अब तक हम अपने विचारन के झंझावात से बाहर आ चुकी रहन, बिना कुछ सोचे जवाब दे दीन। वो ही कहे यही है शहर, हम ही जेबे गाँव। गाँव को डॉक्टर साहब की ज़्यादा ज़रूरत है। मन से जैसे बोझ उतर गया। बुआ जरा 2 कप चाय बना दो, संध्या आई हैं। चाय पी के हम लोग बाजारे जाइबे, गांव जाए खातिर कुछ सामान खरीदे खे। संध्या बुदबुदाते हुए बोली, वाहरी मेरी ग्राम वासनी।
1: तो अबे हमरे श्रोता पंचन सुनिन या कहानी ग्राम वासनी। तो इतनी प्रेरणादायी कहानी सुनावे के लिए शारदा शुक्ला बहनी का देथन बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका यह कहानी कई लाग यह कर प्रतिक्रिया आप अपने ईमेल या पाती द्वारा जरूर बतायो। और अब कार्यक्रम में आगे की कुछ बातें करवे एक अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जून इज मंथ फॉर नेशनल इनफर्टिलिटी अवेयरनेस। लेट्स

0: Voice for Complete Families.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: और श्रोता बन जो देखो, हर मतारी बाप की यह इच्छा होती कि भाई वही अपने बिटिया की ब्याह खूब नीके तान करे हैं, लेकिन कऊ बेर का होते कि आर्थिक स्थिति अच्छी ना होए के कारण मतारी बाप का ये चिंता हो जाती कि भाई अपने बिटिया की ब्याह कैसे करबे। तो आपका बतावे चलिए कि ऐसे भाई लोग जो कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो उनकी बिटिया के ब्याह खातिर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है, और यह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बिटियन के ब्याह बदे आर्थिक सहायता प्रदान की जाते है, और ये में सहायता राशि जोन है तो वही कुल राशि के 75% हिस्सा जोन है वही सीधे जोन दुल्हन यानी कि बिटिया है कन्या वही के खाता में डाले जाते हैं। एक बाद 10% हिस्सा जोन है वही से जोन कपड़ा लत्ता पर खर्च किए जाते हैं जो उनकी बिटिया के बदे होते हैं। एक बाद जो शेष 15% धनराशि है वही कर खर्चा आयोजन के ऊपर होते हैं, जो उनकी भाई आयोजन जो विवाह आयोजन है खाना पाना पीना वहीं पे खर्च किन जाते हैं। अब बात करिए कि यह जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है तो यह की पात्रता का है, तो यही के लिए देखो जो कन्या के परिवार है वही की वार्षिक आय 3 लाख रुपया से अधिक न होवे के चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होवे के चाहिए। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ब्याह के समय बिटिया की उम्र 18 वर्ष से कम और जो लड़का है वही की उम्र 21 वर्ष से कम ना होवे के चाहिए। हाँ, यानी कि भाई बाल विवाह का या रोकत है तो 18 वर्ष के बाद बिटिया के विवाह करो और बटवा जो है वही 21 वर्ष के बाद हैं। अब लाभार्थी जो है इसमें हर समान रूप से सबका लाभ दीन गवाह है, फिर चाहे वो SC हों ST हों पिछड़ा वर्ग के लोग हों अल्पसंख्यक हों या कि सामान्य वर्ग हों कोई भी वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका समान रूप से यही लाभ दीन गवाह है। इसके अलावा आपका बतावा चलिए कि निराश्रित या फिर गरीब विधवा तलाकशुदा जो बिटियन है उनके पुनर्विवाह की व्यवस्था भी एमा है, उन्होंने का एमा शामिल कीन गवाह है। अब बात आवत है कि अगर आप यह योजना के लाभ लेवा चाहत हो तो यह में दस्तावेज काका लगी, तो भाई आप सब जान लो कि यह में दस्तावेज के तौर पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, बैंक के पासबुक और पासपोर्ट साइज के आपके फोटो जो है वही लागत है। और विशेष बात के ध्यान रखे के है कि जो बिटिया है वही के बैंक के खाता आधार से लिंक होवे का चाहिए। हाँ, और आपको बताइए कि यह योजना के लाभ लेवे बदे जनपद में जो सामूहिक विवाह जो आयोजित होते हैं तो वही आयोजन की तिथि से 45 दिन पहले मतलब आपका आवेदन कई देवे का है। तो अब आप आवेदन कहाँ करी हो तो वही के लिए ऑनलाइन अगर आवेदन करा चाहते हो तो आपका हम वेबसाइट बताए दे रहे हैं, तो आप एक लिख लियो। वेबसाइट है csmsvy.upsdc.gov.in या पर जो है आप कह सकते हो। इसके अलावा आप विस्तृत जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय से भी एक विस्तृत जानकारी ले सकते हो। और आपको बताइए कि आप 45 दिन पहले भैया का ध्यान रखो कि 45 दिन पहले जो है आप अपन आवेदन चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जरूर कर दियो। और एक बात और ध्यान रखे का है कि कोनो भी सूचना अगर आप इसमें गलत दियो, चाहे वो जन्म से जुड़ी भई सूचना है, आय से जुड़ी भई है या गलत पता हुए पर आपके आवेदन निरस्त हो सकते हैं, तो यह बात के ध्यान दियो। चलो यह के साथ आपका एक तो हम गवनई सुनवा दे रहे हैं, तो आप आनंद ले लो गवनई के।

तो पंचो मई देखो यह के साथ घड़ी के इशारा हो गया है कि कार्यक्रम की बिरिया समाप्त हो रही है। तो आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का दियो अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, और अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है और आरंभ में हमें एक ये मेल मिला है, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू का आप सभी सुनना चाहते हैं अगर तुम ना होते फिल्म का गीत। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

और ये मेल हमारे पास आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और आप सभी सुनना चाहते हैं जीने की राह फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए, और इस कार्यक्रम में ये मेल हमारे पास आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, और इसके साथ ही कालिका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का, और आप सभी सुनना चाहते हैं महबूबा फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जीने की राह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भेजी है इलाहाबाद से राम प्रकाश गौतम, डीपी यादव, दुर्विजय प्रधान, प्रेम चंद्र पाल और रामचंद्र गौतम ने। इसके साथ ही कानपुर से हमें ये मेल मिला है सौरभ, सारिका और गीता का। आप सभी सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 वर्ष
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर

0: द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट

0: भी यही इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: June is month for National Infertility Awareness. Let's listen from infertility expert.
2: I am Dr. Namita Das, consultant gynecologist, Das Nursing Home, Fatehgarh, Farukhabad. I am a voice for fertility, a voice for complete families.

0: Every couple dreams of a family. For many, infertility causes creates a silent delay. So clinically, infertility means not achieving a pregnancy after a year of trying, affecting almost 1 in 6 couples. And remember, it's just not a woman's issue. Both the partners are equal here. So from lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's the time to break the stigma, start the conversation, and seek timely medical advice. So let us all come together to become a voice for complete families. Thank you.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: विज्ञान और किसान कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता। विषय है पशुओं में चारा विषाक्तता, कारण और निवारण। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं वहाँ कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे गर्मी के मौसम में पशुओं में चारा विषाक्तता की समस्या आती है। इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव डॉक्टर पीके त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गर्मी के मौसम में अक्सर पशुओं में चारा विषाक्तता की समस्या आती है, ये है क्या?
4: नमस्कार किसान भाइयों और हमारी बहनें जो पशुओं के साथ लगी रहती हैं। गर्मी में पानी की तो कमी है ही, हरे चारे की भी कमी हो जाती है, जबकि भूसा तो पर्याप्त मात्रा में रहता है, लेकिन जब हरा चारा वो देते हैं तो कभी कभी ये देखा जाता है कि जानवर लड़खड़ाया, मुंह से झाग गया और ख़त्म हो गया। अब किसान बहुत परेशान हो जाता है। अब इसमें 4-5 तरह के चारा विषाक्तता होती है। एक तो जो हमारे बड़े किसान हैं वो चारा दे देते हैं जो कि फफूंद वाला हो जाता है, गीले पर पड़ा हुआ है, जैसे फफूंद वाला एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं
3: जी।
4: एक तो वो विष है, दूसरा वो चारा है जैसे कि चारा का अचार साइलेज जिसे कहते हैं, वो भी इसी में ही देते हैं, क्योंकि लोग सोचते ही हैं कि हरा चारा तो है नहीं, साइलेज दे दे, और लेकिन वो साइलेज सड़ा होता है, उससे बॉटलिज्म हो जाता है, वो भी चारा विषाक्तता में होता है। लेकिन खास तौर से जो ज्यादा देखा गया है वो नाइट्रेट पॉइजनिंग होती है, और दूसरा इससे भी बड़ी पॉइजनिंग होती है साइनाइड पॉइजनिंग, जिसे चेरी विष कहते हैं। अब किसान भाइयों आप देखें कि चारा कैसे नाइट्रेट पॉइजनिंग वाला हो गया। इसमें खासतौर से डंठलों में ज्वार बाजरा जो आप बोते हैं चारे को पशुओं को खिलाने के लिए, उसमें डंठलों में पॉइजनिंग होती है। और ये होता कैसे है कि हमने बहुत ही उसमें घास पांस नाइट्रेट यूरिया खूब डाला ताकि हमारा चारा जो है हरा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन हमने पानी देना बंद कर दिया क्योंकि पानी था ही नहीं, और ऐसे समय में वो चारा विषाक्त हो जाता है नाइट्रेट का,
3: और तेज गर्मी के कारण।
4: तेज गर्मी है क्योंकि सूखा तो पड़ ही रहा है, पानी बरस नहीं रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो इस चारे को खड़ा हमने दे दिया उसी समय, काटा दे दिया या अपने पशुओं को उसी खेत में डाल दिया और वो खाने लग गए। तो जब डंठल खाएंगे तो उसमें नाइट्रेट होगा, और इसी में ही जब ऊपर के कोपले खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, उससे प्रोसिक एसिड होता है या साइनाइड होता है
3: जी।
4: और ये जनरली सामान्यतः जब उसमें फूल नहीं आते हैं उससे पहले का है, फूल आ जाए तब तो कमी हो जाती है। तो एक तो ये है कि उसके पत्ते खाने पर ये प्रूसिक एसिड या साइनाइड की पॉइजनिंग होती है, नीचे के डंठल खाने पर नाइट्रेट की पॉइजनिंग होती
3: तो
4: है।
3: इसका असर पशुओं पर क्या पड़ता
4: है? जब इसको पशु खा लेते हैं तो उस समय क्या होता है, लड़खड़ाते हैं, मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है, बहुत तेज हाँफना शुरू हो जाता है, और कभी कभी पेट फूल जाता है, नाइट्रेट पॉइजनिंग में पेट फूल जाता है, एकदम पेट फूलेगा। और जहां साइनाइड पॉइजनिंग होता है वहां पर तो समय ही नहीं देता है, 15 मिनट में जानवर लड़खड़ा करके चक्कर खा करके गिर करके मर जाता है। हमारे पशुपालक सोचते क्या हैं कि गर्मी पड़ गई, लू लग गई, जिसके कारण हो गया, जबकि वो हुआ है चेरी पॉइजनिंग से।
3: लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा नाइट्रेट विषाक्तता और साइनाइड विषाक्तता में अंतर क्या है?
4: इसमें एक तो अंतर यह

0: कि अगर आप चेरी पॉइजनिंग में भी आप ट्रूसिक एसिड वाला या साइनाइड पॉइजनिंग लेंगे उसमें बादाम की सुगंध आएगी मुंह से, जब वो सांस लेगा ना, जैसे आप पास में जाएंगे तो ऐसा लगेगा सड़ा बादाम के मीठी सुगंध आ रही है
1: जी।
0: और जबकि नाइट्रेट पॉइजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो अंतर ये है,
1: हाँ।
0: दूसरी बात यह है कि नाइट्रेट में पेट फूलना शुरू हो जाएगा
1: जी,
0: एकदम पेट फूलेगा। और अगर आप मसूड़े देखेंगे तो वो लाल हो जाएंगे, आंख अगर देखेंगे तो वो हल्की सी नीली जैसी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है खून कम हो गया
1: जी।
0: लेकिन जहां पर आप प्रोसिक एसिड या साइनाइड पॉइजनिंग हो रही है वहां पर चेरी रेड कलर के, जैसा चेरी होती है उस लाल कथई कलर का मसूड़े हो जाएंगे और आंख की तरफ हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके कारण तो विषाक्तता का वही जहर ही है,
0: उसका जहर ही है, साइनाइड है। जैसा लोग कहते नहीं है कि साइनाइड खा लें तो आदमी तुरंत मर जाता है, ये वही चीज है।
1: तो इसके बचाव के उपाय या निवारण के उपाय क्या है?
0: निश्चित यही चीज जानना बहुत आवश्यक है। पहले तो जब तक फूल ना आए तब तक उस चारे को काट करके ना दें, और अगर आपको जरूरत ही पड़ गई तो उसको आज सींच दें पूरी तरह से,
1: यानी तरी पूरा रहे
0: तरी, और दूसरा कि दूसरे दिन उसको काट करके छोड़ दें या उसकी कुट्टी कर दें और शाम को दें,
1: थोड़ा भरक भी जाए।
0: तो इसमें होता क्या है कि उसकी साइनाइड जो पॉइजनिंग है प्रुसिक, ये तो खासतौर से एकदम कम हो जाती है। नाइट्रेट जब आपने काट करके उसको किया सुखाया और उसके साथ आप भूसा या पैरा का जो है उसको आप मिला करके दे दें तो उससे नाइट्रेट पॉइजनिंग भी कम हो जाती है। तो दो तो चीज ये हुई,
1: हाँ।
0: सिंचाई आपकी जरूरी है,
1: लगातार
0: लगातार सिंचाई जरूरी है। अगर जहां सिंचाई है तो वहां पर तो ये परेशानी कम हो जाती, या पानी बरसना शुरू हो गया तब तो कम हो जाएगी, बरसात के समय में बहुत ही कम रहती। लेकिन ये जो हमारा सीजन है जून का महीना,
1: इस समय सतर्क रहने
0: की आवश्यकता है। दूसरा एक और है कि हमारे किसान भाई करते क्या है, मैं चाहूं उन्होंने पेट भर का हरा
1: केवल हरा चारा।
0: तो किसान भाई इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहें, 60% से ज्यादा
1: हरा चारा ना दें, 40% सूखा चारा जरूर,
0: 40% सूखा चारा वो भी मिला करके, सुबह काटें शाम को दें या शाम को काटें सुबह दें।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बचाव के उपाय हो गए। अगर कोई जानवर चारा विषाक्तता का शिकार हो गया तो पशुपालक तुरंत प्राथमिक उपचार में क्या करें?
0: तो एक तो घरेलू उपाय आपको बताए जा रहे हैं,
1: जैसे
0: नाइट्रेट पॉइजनिंग हो गई या ये हो गया चेरी विष या साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, तो इसमें घर में अगर आपके पास नारियल का तेल है तो 1 लीटर तुरंत नारियल का तेल पिला दें,
1: ढरकी से
0: पिला दें। इसमें होता क्या है कि जो साइनाइड के जो कण है अंदर, जो साइनाइड बन रहा है,
1: हाँ।
0: उसको बॉन्ड कर लेता है, उसको जोड़ लेता है
1: जी।
0: नंबर एक। नंबर दो, ठंडा पानी
1: जी
0: उसको आप पिला दें,
1: अच्छा।
0: 4-5 लीटर एकदम पिलाएं
1: जी।
0: तीसरा चीज, घरों में छाछ होती है, आप छाछ पिला दें, 3-4 लीटर छाछ पिला दें। और अगर आपको मालूम चल गया कि नाइट्रेट पॉइजनिंग हो गई, लड़ाता और तड़पता तो रहता है लेकिन जी जाता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो उस समय फिर आप सिरका दे सकते हैं।
1: अच्छा, कितनी मात्रा?
0: 1 लीटर सिरका को 5 लीटर पानी में मिलाएं और तुरंत उसको धीरे धीरे करके पिलाते हैं। ये तो घरेलू इलाज हो गया। दूसरा ये कि ऐसे पशुओं को तुरंत ठंडे में रखें, दौड़ाएं ना। होता क्या है कि खेत में उन्होंने खाया और हमने जब वो लड़खड़ाने लगा तो उसको दौड़ा दिया, कि सोचा कि दौड़ाने से थोड़ा सा और ताकत आ जाएगी, दौड़ाए ना। दूसरा है कि उसको दूसरी चीज, दूसरा चारा तुरंत ना दें, एक तो ये हुआ। दूसरा, किसान भाइयों को एक और ध्यान देना है कि सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग का रामबाण है। और वैसे तो जितने हॉस्पिटल्स हैं सब में है, और हम तो ये भी सुझाव देंगे जो बड़े काश्तकार हैं वो अपने पास आधा 1 किलो सोडियम थायोसल्फेट रखे रहें
1: तो इसको दे,
0: खराब नहीं होगा। एक तो ये कि खून में आप सीधे चढ़ाएं वो आप दे नहीं पाएंगे, उसके लिए 50 से 100 ग्राम पानी में घोला और आप दे दीजिए
1: धरकी से
0: और उसी का ही रिजल्ट आ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में चारा विषाक्तता कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा जो मोबाइल नंबर है 94-15-15-28-98, 94-15-15-28।

0: 9815152898।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का?
0: मेरा तो आपसे यही विनती है कि इस समय चारा को थोड़ा सा संभाल करके दें। दूसरा साइलेज है, साइलेज को देख ले, सड़ा ना हो, फफूंद वाला ना हो। दूसरा कि जहां कहीं पर भी ऐसा हो वो चारा देना एकदम बंद कर दें।
1: और नजदीकी पशु डॉक्टर
0: और नजदीकी पशु डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि चरी में आधा घंटा से ज्यादा लेता नहीं है, पशु की मृत्यु हो जाती है।
1: डॉक्टर पी के त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और पशुओं में चारा विषाक्तता है क्या, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने पशुओं में चारा विषाक्तता, कारण और निवारण पर जो भी जानकारी आपको दी है उसे आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: June is month for National Infertility Awareness. Let's listen from infertility expert.
4: I am Dr. Namita Das, consultant gynecologist, Das Nursing Home, Fatehgarh, Farukhabad.

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। अवधेश कुमार निवासी बुद्धि विहार थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री सोनी दिनांक 15 मई 2026 से लापता हैं। सोनी की आयु 35 वर्ष कद 5 फीट रंग गोरा और इकहरा शरीर है। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9170749795। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9170749795। सरस्वती पत्नी सुभाष निवासी नियामतपुर मजरे गंगौली थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी दिनांक 23 मार्च 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 33 वर्ष कद 5 फीट रंग गोरा है। इनके बाराबंकी और लखनऊ के आसपास जनपदों में पाए जाने की संभावना है। राजा राम निवासी ग्राम थरिया थाना मिर्ज़ापुर जनपद शाहजहांपुर ने सूचित किया है कि कुमारी अंजलि देवी दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। अंजलि देवी की आयु 19 वर्ष कद 5 फीट रंग गोरा चेहरा गोल है। गुमशुदगी के समय इन्होंने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

मिट्टी की सोंधी महक से महकते लोक रंग कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से। बोल है अरे गणपति सुमिरो री।

सखी मंगल गाओरी विघ्न सब दूर करें। अभी आपने ये गणेश वंदना सुनी, स्वर था डॉक्टर शिखा भदौरिया का। और अब आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में, नकटा बोल हैं हमका लखनऊ की सैर कराई दे बलमा।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी, और कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में लोक भजन।

डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद आज आपने उठाया लोक माधुरी कार्यक्रम में, और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है। अब मीडियम वेव 400.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्त गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख

0: साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगमनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो गए हैं। अब आपको जानकारी देते हैं आज के इस सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 6:30 पर सुनिएगा ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:10 पर लेकर हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम युववाणी और इसके अलावा शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। श्रोताओं, ये था विवरण आज की इस सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, कल रात 11:10 पर सुनिएगा लखनऊ स्थित स्थानीय इमामबाड़ा गुफरो मआब में संपन्न मजलिसे शामे गरीब पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 सुनिएगा डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे की वार्ता भक्ति काल में कवियों का दर्शन, इसका आनंद आपको बता दें आप रात 8:00 ले सकेंगे। जिले की हलचल का समय होगा कल सुबह 9:15 पर। उर्दू प्रोग्राम में सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा मुहर्रम पर खुसूसी मकाला, करबला का पैगाम सब्र और

انسانیت. مقالہ نگار ہوں گے پروفیسر سید صادق حسین عابدی. اس کے علاوہ فاضل ہاشمی کا مرثیہ آپ سماعت فرما سکیں گے. گاندھی چرچا کا سمے ہوگا صبح 6:10. سواستھ چرچا کارکرم میں صبح 7 آپ کو نینا سونکر جانکاری دیں گی صحت کے لیے گوند کتیرا کے فائدے کے وشے میں. ساپتاہک انگریزی کارکرم آپ سن سکیں گے کل شام 7:31 پر. اس کارکرم میں سنیے گا ڈاکٹر شیبا راکیش اور دیوانشی پرکاش کا انٹرویو. وشے ہوگا ینگ مائنڈز ریڈنگ سائنسز اینڈ انٹرویو ود ریسرچر. शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाएंगे सुबह 7:31 और रात 10:30 पर. इस कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे अशोक गोस्वामी, इनका वायलिन वादन आप सुन सकेंगे. सुबह सुनिएगा राग अलहया बिलावल और राग भैरवी. इसके अलावा रात 10:30 पर आपको बता दें आप सुन सकेंगे राग जयंत मल्हार. सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात 8:10 पर, जिसमें कल कलाकार होंगे अरशद हुसैन चिश्ती व साथी. इनकी गाई नात व कवालियों का आनंद आप ले सकेंगे. लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का समय होगा सुबह 9:50 और दिन में 2:45 पर, जिसमें कल कलाकार होंगी डॉक्टर आभा आर दीक्षित. इनके गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे. बहने अपना कार्यक्रम अपराजिता सुनेंगी दिन में 1:15 पर. कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत दिन में 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम विज्ञान और किसान, जिसमें कल राम नरेश वर्मा से की गई भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे. विषय होगा गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन. भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय. कृषि कार्यक्रमों के ही अंतर्गत सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें कल आपको जानकारी दी जाएगी खरीफ में हरा चारा उत्पादन के विषय में. कल शाम 5:10 पर हम लेकर हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम युववाणी, माफ कीजिएगा कार्यक्रम युवा तरंग. इसके अलावा शाम 5:45 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नई उड़ान, और शाम 6:30 और 50 पर होगा कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी. श्रोताओं, इसके अलावा दिन में समय समय पर फिल्म संगीत का और प्रायोजित कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे. ये था विवरण आज की सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का. हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं. शाम के 5:10 हो गए हैं. श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवा तरंग.

0: कुछ बातें सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं बताती, कुछ गीत सिर्फ दिल नहीं छूते बल्कि युग बदल देते हैं, और कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर की नहीं होती बल्कि सपनों की नींव होती हैं, और कुछ राय बदलाव की नींव बन जाती है। यही सब कुछ समेटे हुए है आपका अपना कार्यक्रम युवा तरंग। मैं हूं आपकी रेडियो साथी सुरभि, और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवा तरंग में।
1: और दोस्तों, साथ में मैं हूं को होस्ट आपकी रेडियो साथी कशिश। हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में, जहां करंट अफेयर्स की सूझबूझ संगीत का सुरूर है और इतिहास की गौरव गाथा भी है, और सबसे बढ़कर आप युवाओं के विचारों का सम्मान भी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो अखबारों की सुर्खियों में तो आई ही हैं, लेकिन इसका असली सफ़र शुरू होता है उस घर में जहां एक महिला ने पहली बार गैस का चूल्हा जलाया। साथियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
3: मैं डॉक्टर अलका मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम फतेहपुर से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का

0: थे, एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद प्रेग्नेंट ना होना। हर 6 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकती हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और अपने डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
1: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, एक वो समय था जब हमारी माताएं बहनें रोज धुआं चूल्हे पे करती थीं और चूल्हे पर लकड़ी, गोबर, कोयला जलाते हुए उनकी आंखों में आंसू और सांस लेने में भी उन्हें तकलीफ होती थी। इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए साथियों, साल 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की।
3: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब घरों में महिलाओं को बिना किसी सुरक्षा जमा किए LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। यानी कि अब हर घर में धुएं वाला चूल्हा नहीं बल्कि LPG गैस सिलेंडर का चूल्हा जले, ताकि हमारी माताएं और बहनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और उनका जीवन खुशहाल रहे।
2: जानते हैं साथियों, इस योजना के परिणाम इतने पॉजिटिव हैं कि आज देश में 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला कनेक्शंस जारी किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही साथियों, एक बात बताऊं आपको कि इस योजना की सबसे खास बात क्या है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन सिर्फ महिलाओं के नाम पर जारी होता है, यानी कि घर की महिला को उसके अपने अधिकार से रसोई की जिम्मेदारी मिलती है और एक नई पहचान भी मिलती है।
3: तो दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो ये पात्रता मानदंड है। आप एक वयस्क महिला होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका परिवार BPL बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में आना चाहिए। घर में पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए और आपके नाम पर कोई बैंक खाता भी होना चाहिए। विशेष रूप से SC ST परिवार, वनवासी, अंत्योदय परिवार और प्रवासी परिवारों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो दोस्तों, आवेदन करना बहुत आसान है। आप अपने नजदीकी LPG वितरक, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या आधिकारिक वेबसाइट www.pmuy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
2: साथियों, जहां एक ओर उज्ज्वला योजना ने ग्राम में जीवन में और महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लाई है, वहीं आज साथियों हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक वार्ता जो आप ग्राम में आधारित अर्थव्यवस्था में गांधी दर्शन के महत्व को समझाती है। वार्ताकार हैं शिवकांत श्रीवास्तव जी, तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
4: भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं। आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे पूर्वजों ने, राष्ट्र शिल्पियों ने जिस स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना की थी, आज वह किस स्थिति में है। गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। शहरों और गांवों के बीच विषमता बढ़ती जा रही है। गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। इसका अर्थ है कि हमने विकास और अर्थव्यवस्था के जिस मॉडल को अपनाया, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चिंतन और दर्शन अहिंसा के सिद्धांत पर, त्याग के सिद्धांत पर और सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने एक ऐसे अहिंसक भारत की कल्पना की थी जिसमें हर व्यक्ति को जीने का समान अधिकार मिले, सभी की आवश्यकताएं पूरी हों, कोई किसी का शोषण ना करे, हर व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो, सब सुखी हों। गांधी जी ने इस व्यवस्था को ग्राम स्वराज के नाम से पुकारा था, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जो राजनैतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता अथवा तानाशाही जैसी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान प्रस्तुत करती है। इस परिकल्पना को आदर्श लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। ग्राम स्वराज राम राज्य की पहली सीढ़ी है। राम राज्य का मतलब सभी सुखों से परिपूर्ण समाज।

स्वनिर्णय वाली व्यवस्था। गांधी जी गांव को भारत की आत्मा मानते थे। उनका मानना था कि भारत का विकास गांव को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने से ही हो सकता है, और यह तभी होगा जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक, ईमानदार तथा उद्यमी हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना रहे। सभी मिलकर खेती करें, खेती योग्य भूमि उन लोगों में वितरित की जाए जो श्रम से पर्याप्त अन्न का उत्पादन करने में सक्षम हो, सभी को उनके श्रम का पूरा मूल्य मिले। गांधी जी किसी के मेहनत का कम कीमत चुकाने की बात को हिंसा और शोषण मानते थे। उनका मानना था इससे समाज में असंतुलन और भ्रष्टाचार बढ़ता है। गांधी जी व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनका मानना था कि गांव के लोग अपनी भलाई तथा आवश्यकता के लिए स्वयं नीतियां बनाएं, स्वयं निर्णय करें। इसके लिए पंचायती व्यवस्था तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए जोर देते थे। प्राचीन भारत में कृषक, लोहार, सुनार, बढ़ई, जुलाहा तथा अन्य व्यापारी गण मिलकर एक आत्मनिर्भर आर्थिक ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण करते थे। गांधी जी का मानना था कि गांव और शहर एक दूसरे के पूरक बने। गांव शहर के लिए उत्पादक का कार्य करें तथा शहर गांव के लिए उपभोक्ता बने। उपभोक्ता और उत्पादक का चक्र संतुलित रूप से देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा। गांव तथा शहर अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अन्न, सब्जियां, दूध, दवाएं, फल फूल उत्पन्न करें तथा अपने वस्त्रों का भी निर्माण स्वयं करें। तत्पश्चात अन्य गांवों को तथा शहरों को भी उपलब्ध कराएं। इससे उनके आय में भी वृद्धि होगी तथा वह आत्म स्वाभिमानी भी बन सकेंगे। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। गांधी जी की नीतियों की आज लोग आलोचना करते हैं कि क्या चरखा चलाने से, सूत कातने से देश का विकास हो सकता है, किंतु उसके मूल सिद्धांत को लोग नहीं समझ पाते। गांधी जी की इस सोच को यदि सही मायने में लागू किया गया होता तो आज हर हाथ के पास काम होता और हर परिवार अथवा हर गांव किसी न किसी कौशल में दक्ष होता। गांव तथा शहर दोनों का संतुलित विकास होता तथा बेरोजगारी और युवा असुरक्षा जैसी भीषण समस्या से युवाओं को आज न जूझना पड़ता। आज की सरकारों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण उद्योग धंधों को, ग्रामीण संसाधनों को विशेष सहायता पहुंचाकर आधुनिक बनाकर उपयोगी बनाना चाहिए। इसके लिए नवीन तकनीकी और प्रौद्योगिकी आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। चीन से सीखना चाहिए। चीन ने इसी प्रकार अपने देश में हर परिवार को नवीन तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से जोड़कर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया और उससे न केवल बेरोजगारी दूर की बल्कि चीन को एक विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश भी बनाया। ग्राम्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर हम न केवल गांव से शहरों की ओर पलायन रोक सकते हैं बल्कि एक संतुलित समाज का विकास भी कर सकते हैं। और राम राज्य की परिकल्पना तभी साकार होगी जब गांव और शहर का प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट एवं सुखी होगा। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के बारे में कहा था, ग्राम स्वराज तथा पंचायती व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से जुड़ी सभी समस्याओं का हल करेगी। कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मसले और विवाद गांव स्तर पर ही हल होंगे। कृषि योग्य भूमि खेती के लिए उपलब्ध होगी। गांव में एक रंगशाला, पाठशाला और सार्वजनिक पंचायत भवन भी होंगे। वो अपने लिए पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करेंगे। गांव की सफाई व्यवस्था तथा शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होगी। जहाँ तक संभव होगा प्रत्येक गाँव का व्यक्ति सत्याग्रह और अहिंसा में विश्वास करेगा। ग्राम की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम रक्षक बनना होगा और गांव के तमाम कार्यों का प्रबंध एक 5 व्यक्तियों की समिति मिलकर करेगी, जिसका चुनाव गांव के स्त्री

0: पुरुष मिलकर करेंगे और इस प्रकार एक समृद्ध तथा आत्मनिर्भर ग्राम का विकास हो सकेगा, जिससे अंततः भारत राष्ट्र का विकास संभव होगा।
1: तो दोस्तों, ये थी वार्ता ग्राम में आधारित अर्थव्यवस्था का गांधी दर्शन, जिसके वार्ताकार थे डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव। और आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
4: मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, अलका मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम फतेहपुर से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद प्रेग्नेंट न होना। हर 6 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और अपने डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
3: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
5: तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक नए विषय की, जो कि है नए युग के करियर, यानी ऐसे करियर जिनकी मांग आज तेजी से बढ़ रही है और जिनमें आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के कई अवसर बन सकते हैं।
6: साथियों, आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर 3 क्षेत्रों पर बात करेंगे। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन।
5: सुरभि, आज का युवा सिर्फ परंपरागत करियर तक सीमित नहीं रहना चाहता।
6: बिल्कुल।
5: अब करियर का मतलब केवल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या गवर्नमेंट जॉब नहीं रह गया है। आज स्किल्स के आधार पर भी करियर बन रहे हैं।
6: बिल्कुल कशिश, आज इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। अब छोटे शहरों और कस्बों के युवा भी ऑनलाइन स्किल सीखकर नेशनल और ग्लोबल लेवल पर काम कर सकते हैं।
5: भारत में डिजिटल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। सन 2025 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 800 मिलियन से अधिक बताई गई है और मोबाइल इंटरनेट ने छोटे शहरों तक डिजिटल अपॉर्चुनिटीज पहुंचाई हैं और इसी डिजिटल विस्तार ने AI, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे करियर्स को आसान बना दिया है।
6: तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वो बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। AI का मतलब है कि एक ऐसी तकनीक जो मशीन को ह्यूमन लाइक टास्क करने में मदद करती है, जैसे कि डेटा समझना, लैंग्वेज प्रोसेस करना, इमेज पहचानना या कोई प्रिडिक्शन करना और रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करना।
5: आज AI का उपयोग केवल टेक्नोलॉजी कंपनीज तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिटेल, कस्टमर सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस तक में AI का उपयोग बढ़ रहा है।
6: बिल्कुल दोस्तों, AI से जुड़े करियर ऑप्शन भी बहुत हैं, जैसे कि AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI प्रोडक्ट मैनेजर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट और AI एथिक्स रिसर्चर।
5: लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, हर युवा को AI इंजीनियर बनना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। AI का मतलब केवल कोडिंग नहीं। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग या डिजिटल ऑपरेशंस में AI का उपयोग सीख सकता है।
6: और साथियों, अगर कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है तो वो AI टूल का उपयोग करके रिसर्च, राइटिंग, ट्रांसलेशन, कॉन्टेंट स्ट्रेटजी, एडुकेशन और कम्युनिकेशन में कर सकता है अपने करियर की तलाश। यानी कि AI एक करियर

0: करियर भी है और एक सपोर्टिंग स्किल्स भी है।
1: आज के समय में एआई को लेकर डर भी है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच ये है कि एआई कई रेपिटेटिव कामों को ऑटोमेट करेगा और साथ ही नए स्किल्स की डिमांड भी पैदा करेगा। नास्कॉम की एक रिपोर्ट में भारत को एआई स्किल पेनिट्रेशन में आगे बताया गया है और 2026 तक एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड 1 मिलियन से अधिक होने के अनुमान भी हैं।
0: तो इसका मतलब है कि जो युवा एआई से डरने की बजाय उसे समझेंगे और सीखेंगे उनके लिए अवसर बढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों, ब्लाइंड डिपेंडेंस भी बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि एआई टूल है, सोच का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है, एआई से काम तेज हो सकता है लेकिन सही जजमेंट, एथिक्स, क्रिएटिविटी और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अभी भी इंसानों की ही ताकत है। तो दोस्तों, हम और करियर ऑप्शंस जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन की। आज हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन दिखना चाहता है, चाहे वो दुकान हो, कोचिंग सेंटर हो, रेस्टोरेंट, बुटीक या कोई स्टार्टअप हो। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ऑनलाइन एड्स, ईमेल मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं।
1: वहीं कंटेंट क्रिएशन आज केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि करियर, एडुकेशन और पर्सनल ब्रांडिंग का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। फिर वो चाहे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसके ज़रिए युवा अपनी नॉलेज, क्रिएटिविटी और स्किल्स दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ वीडियो बनाना काफ़ी नहीं है साथियों, रिसर्च, कंसिस्टेंसी और प्रेजेंटेशन और ऑथेंटिसिटी भी बहुत ज़रूरी है।
0: यानी कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को ऑडियंस तक पहुंचाती है और कंटेंट क्रिएशन ऑडियंस से रिश्ता बनाता है। अगर युवा इन दोनों स्किल्स को सीख ले तो वो फ्रीलांसिंग, जॉब्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस या अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकता है। दोस्तों भारत में डिजिटल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है और इसी वजह से ज़रूरी है कि हम इन नई स्किल्स को अपनाएं और अपने करियर को एक एडवांस्ड ग्रोथ दें। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और कल आपसे फिर होगी मुलाकात। कल हम बात करेंगे, चर्चा होगी नैतिकता विषय पर, साथ ही वार्ता होगी शारीरिक दक्षता में योग की भूमिका पर, जिसमें वार्ताकार होंगे गणेश शंकर पांडे जी, और साथ ही आपको सुनाएंगे कुछ आवश्यक रोजगार सूचनाएं भी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कशिश जाफरी और मेरे साथ
1: सुरभि
0: लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, अलका मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम फतेहपुर से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद प्रेग्नेंट न होना। हर 6 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और अपने डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
0: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।

0: सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई उड़ान और मैं हूं आपका रेडियो साथी आनंद मिश्रा। और मुझे उम्मीद है कि आजकल जो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को कैसे ग्रोथ दी जाए इसकी चर्चा ज़रूर कर रहे होंगे। जैसे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि कैसे अपनी सैलरी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, उसका इंक्रीमेंट हो। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कैसे अपना टर्नओवर थोड़ा सा और बेहतर किया जाए। और जो एजुकेशन की फील्ड में है, जो छात्र हैं, वो सोच रहे होंगे कि किस क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप है, जहाँ पर बेहतर करके थोड़ा सा और अपने फ्यूचर को ग्लो दिया जाए एक। लेकिन इन सब के जो मूल में है उसकी चर्चा करना भी आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे आज के समय को बेहतर बनाएगा बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी एक बेहतर फ्यूचर तैयार करने में हमारे लिए सहायक है। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, आज के समय में हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बेहतर

के समय को बेहतर बनाएगा, बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी एक बेहतर फ्यूचर तैयार करने में हमारे लिए सहायक है। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, आज के समय में हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बेहतर हो, स्मार्ट हो और थोड़ा इको फ्रेंडली हो। हम आज देख रहे हैं कि मोबाइल, इंटरनेट और नई नई टेक्नोलॉजी का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में बेहिचक कोई भी उसमें हम देर नहीं कर रहे हैं, उसको तुरंत अपना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का कैसे ध्यान रखें, इस पर भी चर्चा करना और बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहीं पर बात होती है ग्रीन एनर्जी की, क्योंकि यहीं से उसकी भूमिका जो है वो शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन एनर्जी क्या है, मतलब ये कैसी एनर्जी है जिसकी चर्चा करना ज़रूरी है। लेकिन इसकी चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति के माध्यम से जो हमें प्राप्त है, जैसे कि सूरज, हवा, पानी, ये सभी वो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ से हमें ये एनर्जी मिलती है और ये पर्यावरण को साफ रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इसलिए क्योंकि इससे धुआं और प्रदूषण दोनों कम होता है, बिजली का खर्च भी कम होता है। और यही कारण है कि आज देखिए पूरा विश्व जो है क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर की ओर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ बिजली पैदा करने का एक साधन नहीं है, ये हमारे लिए और हमारे कल के लिए एक बेहतर, आसान और अच्छा जीवन देने के लिए बहुत सहायक है। क्योंकि हम सभी अंतोगत्वा यही चाहते हैं कि हवा साफ हो, आसमान साफ हो और आसपास का जो वातावरण है वो भी एकदम हरियाली भरा हो। क्योंकि जैसा कि हम लोग फिल्मों और गानों में देखते हैं ना कि एकदम हरा भरा सब कुछ दिखता है तो हमें देखने में भी सुंदर लगता है, तो ऐसा आप रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। और इसी से संबंधित देखिए गाना भी हमको याद आ रहा है, ये हंसी वादियाँ जिसमें अच्छे अच्छे पहाड़ और खूबसूरत प्रकृति के दर्शन होते हैं, तो ये सब कुछ आप अपने जीवन में खुद भी सामने देख सकते हैं। फिलहाल आप गाने के माध्यम से इसको एंजॉय करिए और प्रकृति के साथ जुड़े रहिए।

0: June is month for National Infertility Awareness. Let's listen from infertility expert.
1: Hello everyone. I am Dr. Anjali Srivastav, MBBS DGO, practicing as an obstetrician gynecologist in Farrukhabad. A voice for fertility, a voice for complete families. Every couple dreams of having a family. For many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after a year of trying. Affecting 1 in 6 couples, remember, it's never just a woman's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatment are available. It's time to break the stigma, start the conversation, and seek timely advice. Let us come together to be a voice for complete families.
0: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: June National Infertility Jagrukta ka mahina hai. इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
3: मैं डॉक्टर अलका गुप्ता अलका मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम फतेहपुर से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपति का यह सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद प्रेग्नेंट न होना। हर 6 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और अपने डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
2: गुफिक बायोसाइंसेज के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
4: साथियों, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे ना कि कैसे ग्रीन एनर्जी हमारे संसाधनों की बचत करती है और जीवन को हमारे बेहतर बनाती है, उसी तरीके से डिजिटल लेन देन भी हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना रहा है। आपको याद होगा कि पहले अगर किसी को पैसा भेजना हो तो मैं बैंक जाना पड़ता था, बिल जमा करना हो तो लाइन में लगना पड़ता था, या किसी को दुकान में किसी को पैसा देना है तो फिर दुकान जाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब सब कुछ मोबाइल फ़ोन की मदद से बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड में ये सब कुछ काम हो जाते हैं। यानी कि न लाइन में लगने की ज़रूरत है, न ज़्यादा कागजी काम और ना ही नगद पैसे साथ रखने की चिंता है। यही वजह है कि आज डिजिटल लेन देन की बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसमें समय की बचत हो रही है, मेहनत कम लग रही है और काम जल्दी हो जा रहा है। तो आज हम अपने ओबी सेगमेंट युगांतरण में बातचीत करेंगे डिजिटल लेन देन की, कि कैसे इसमें कितनी बचत होती है और कितनी ये आसानी से हो पा रहा है और क्या इसमें चुनौतियाँ हैं। तो इसमें बातचीत के लिए हमारे साथी, रेडियो साथी शोभित ने लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वाकई में ये आसान हो गया है, जीवन को हमारे आसान कर रहा है या कुछ चुनौतियां भी हैं। तो आइए सुनते हैं।
5: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। और जब समय के साथ पैसा भी सुरक्षित रहे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। सोचिए जरा, लाइन में लगने की मजबूरी नहीं, खुले पैसों की चिंता नहीं और जेब में नगदी कम होने का डर भी नहीं, बस एक मोबाइल और काम चुटकियों में।

0: साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल लेन देन की, जो सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आम आदमी की बचत, सुविधा और भरोसे की कहानी है। चाहे छात्र हो, किसान हो, दुकानदार हो या बुजुर्ग, डिजिटल भुगतान ने हर किसी के लिए रास्ते आसान किए हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी।
1: जानकारियों के लिए टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग है, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भी टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग है। और सामान्य नागरिक, हम डिजिटल पेमेंट के लिए क्यों न चले? हमारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूती के साथ उभर रहा है, लेकिन हमारे गांव में छोटी छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे छोटे मॉल में भी हम क्यों न डिजिटल पेमेंट की ओर बल दें? आइए, ईमानदारी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए हम ये डिजिटल पेमेंट। और मैं तो व्यापारियों को कहूंगा, आप बोर्ड लगाते हैं, ज्यादातर गांव में जाओगे व्यापारियों के बोर्ड होते हैं, आज नकद कल उधार, ऐसा बोर्ड लगा रहता है, आज नकद कल उधार। मैं चाहता हूं कि अब तो हमने बोर्ड लगा चाहना, ये डिजिटल पेमेंट को हाँ, नकद को ना।
0: तो साथियों, जो हमारी आज की श्रृंखला है उसके अंतर्गत आज जो हमारा विषय है, डिजिटल लेन देन, कितनी बचत और कितनी आसानी, इसी विषय को लेकर के मैं आपका रेडियो दोस्त शोभित पहुंचा हूं जनता के बीच में और उनके कुछ विचार जाने हैं। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। आप अपना नाम बताइए।
2: मैं शशिकांत।
0: क्या करते हैं आप?
2: मैं रिटायर्ड लेखाकार ग्राम विकास विभाग से हूँ।
0: आपने सरकारी सेवा में एक लंबा समय बिताया है। जब पहली बार डिजिटल लेन देन की बात आई तो मन में क्या भाव था? डर लग रहा था या जिज्ञासा थी आपको?
2: सच कहूँ तो शुरुआत में डर ही लगा था, लगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जब बच्चों ने समझाया और बैंक वालों ने मदद की तो धीरे धीरे भरोसा बन गया।
0: आज के समय में पेंशन से लेकर बिजली, पानी और मोबाइल बिल तक सभी चीजों का डिजिटल लेन देन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना रहा है?
2: बहुत ज्यादा आसान हो गई है। पहले हर महीने बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, अब घर बैठे मोबाइल से ही पेंशन देख लेता हूँ और बिल भी भर देता हूँ।
0: पहले बैंक आने जाने का किराया, समय और मेहनत सब लगता था, अब क्या आपको लगता है कि इससे पैसे की भी बचत हो रही है?
2: बिल्कुल, आने जाने का खर्चा बचा, समय बचा, कई बार तो कैश न होने पर काम रुक जाता था, अब वो परेशानी भी नहीं रही है।
0: यानी डिजिटल लेन देन की सुविधा के साथ साथ जेब पर भी बोझ कम हो गया है।
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा, ये बताइए कि बहुत से बुजुर्ग आज भी सोचते हैं कि मोबाइल या डिजिटल भुगतान उनके बस की बात नहीं है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, एक बार सीख लेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। धीरे धीरे शुरू करें और जरूरत पड़ने पर परिवार या बैंक से मदद लेते रहे।
0: अगर कोई पेंशनर आज शुरुआत करना चाहे तो आपके हिसाब से सबसे आसान तरीका कौन सा है कि वो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल कर सके?
2: मेरे हिसाब से UPI सबसे ज़्यादा आसान है, बस मोबाइल नंबर से जुड़ना है और QR कोड स्कैन करके भुगतान कर देना है।
0: क्या डिजिटल लेन देन ने बुजुर्गों को ज़्यादा आत्मनिर्भर बना दिया है?
2: बिल्कुल बनाया है, अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अपने काम खुद कर लेते हैं, आसानी से डिजिटल लेन देन कर लेते हैं, पैसे, श्रम और समय की बचत होती है।
0: भाई साहब, नाम क्या है आपका?
3: बिमल कुमार मिश्रा।
0: किस चीज का काम करते हैं आप?
3: 99 बाजार स्टोर चलाते हैं।
0: आपने डिजिटल भुगतान कब और क्यों शुरू किया था?
3: जब से आया है मार्केट में तब से मैं इसको ऑलरेडी चला रहा हूँ।
0: क्या इससे ग्राहकों की संख्या में कोई फर्क पड़ा है?
3: बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जो ग्राहक मेरे पहले छूट जाते थे कैश नहीं है डिजिटल भुगतान से, वो भी कस्टमर मेरे पास आने लगे।
0: कि डिजिटल लेन देन जब से आप कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी बचत कैसे हो रही है? जैसे पहले कैश में होती थी उस तरह से हो रही है या कुछ बचत में भी फर्क पड़ा है?
3: बचत में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, उससे आप जितना खर्चा करोगे उतना ही जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जेब में पड़े होते हैं तो ज्यादा खर्चा हो जाता है, अकाउंट में जाने से कम खर्चे होते हैं।
0: अच्छा, इसका मतलब हिसाब किताब रखना पहले से ज्यादा आसान है?
3: बहुत आसान है।
0: जो आप डिजिटल भुगतान लेन देन करते हैं, बैंक के कोई काम है या अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इसमें कोई आपको मदद मिलती है?
3: मदद तो मिलती है, वो स्टेटमेंट उसका निकलवा के, जैसे कुछ बिजनेस के लिए अगर कोई इशू हुआ पैसे का या कोई हेल्प चाहिए हुई तो ये सब इसके माध्यम से बड़ी आसानी से मिल जाती है।
0: अच्छा, तो अगर हम आपसे पूछें कि ये पेमेंट का माध्यम अपनाया जाए तो आप क्या कहेंगे?

0: नहीं, बहुत अच्छा है, ये सबको अपनाना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है।
1: भैया आपका नाम क्या है?
2: विक्रम कश्यप।
1: अच्छा, ये जो आपने QR कोड लगा रखा है, इससे आपको क्या लगता है, आपको कितनी सुविधा हुई है?
2: तो सुविधा का टूटे झंझट खत्म है, आदमी पूरा पैसा देता है, जो बाद में देना चाहता है वो पहले कर देता है।
1: अच्छा, और ये कितने समय से आप यूज कर रहे हैं?
2: शुरू हुआ था तभी कर दिए थे।
1: तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आती बैंक खाते से रिलेटेड सेटलमेंट को लेकर के?
2: नहीं, कभी नहीं, कभी कभार मतलब जैसे सर्वर डाउन रहता है।
1: हाँ।
2: तो उसकी वजह लेट हो जाता है, बाकी पेमेंट आ जाता है।

0: डिजिटल लेन देन, इसने बाहर की दुनिया में लेन देन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जो हमारे घर के अंदर होती है, और घर के अंदर की दुनिया संभालती हैं घर की महिलाएं। डिजिटल लेन देन ने कैसे घर की महिलाओं को फायदा पहुंचाया है, आइए सुनते हैं कुछ महिलाओं से वो क्या कहती हैं।
1: मेरा नाम निवेदिता है, मैं कोई बड़ी व्यापारी नहीं हूँ, बस अपने काम से अपनी पहचान बना रही हूँ। पहले पैसे लेन देन में उलझन रहती थी, कोई कहता कल दूंगा, कोई छुट्टी नहीं देता, अब ग्राहक मोबाइल से ही भुगतान कर देते हैं सीधे मेरे खाते में। डिजिटल लेन देन ने मेरे काम को रफ्तार दी है, हिसाब साफ रहता है और हर दिन की कमाई मुझे दिखती है, ना ही बैंक की लाइन में लगना, ना बार बार बाहर जाना, समय बचता है, मेहनत की कीमत भी मिलती है, और आज मेरा छोटा सा काम डिजिटल भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है मैं सिर्फ काम नहीं कर रही बल्कि अपने पैरों पे खड़ी हो रही हूँ।
2: मेरा नाम कीर्ति पांडे है। घर की जिम्मेदारियाँ तो सुबह आँख खुलते ही शुरू हो जाती हैं। कभी दूध वाला, सब्जी वाला, बच्चों की फीस, बिजली का बिल। पहले हर काम के लिए नगद ढूंढना पड़ता था, कभी छुट्टे नहीं, कभी लाइन लंबी। अब मोबाइल हाथ में है, एक क्लिक में भुगतान हो जाता है, न बाहर जाना, न समय बर्बाद, घर संभालते हुए काम भी निपट जाता है। डिजिटल लेन देन ने मेरी रसोई से लेकर मेरे बजट तक को संभाल लिया है। कैश की चिंता कम, हिसाब साफ, हर खर्च मोबाइल में हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बचत भी नजर आती है, और सबसे बड़ी बात, मुझे भी लगता है कि मैं सिर्फ घर नहीं, घर की आर्थिक समझ भी संभाल रही हूँ।
0: आज के तेज रफ्तार दौर में जब मोबाइल ही हमारा पर्स बन चुका है, तब एक सवाल हर किसी के मन में है, डिजिटल लेन देन वाकई कितनी बचत करता है और कितना आसान है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी, जो रोजाना आम आदमी से लेकर व्यापारी तक को डिजिटल भुगतान की राह दिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक निराला नगर ब्रांच के चीफ मैनेजर मिस्टर अभिषेक कुमार जी, आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं।
3: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
4: धन्यवाद
3: सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल हर तरफ डिजिटल लेन देन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि डिजिटल लेन देन आखिर में है क्या।
4: देखिए, डिजिटल लेन देन का जो मतलब है कि आपको जो बिना नगद के जो आप पैसे मोबाइल, एटीएम कार्ड या इंटरनेट के जरिए जो आप भुगतान कर सकते हो, जैसे आपका यूपीआई है, मोबाइल बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ये सभी आपके डिजिटल लेन देन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो पैसा है वो सीधे खाते से खाते में जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह सुरक्षित और तेज तरीके से ये काम इसमें हो जाता है।
3: यानी सर, अगर इसको ऐसे कहें कि जेब में नकदी कम और मोबाइल में ज्यादा का काम हो गया है।
4: बिल्कुल, आप ऐसा ही समझिए।
3: डिजिटल लेन देन से आम आदमी को बचत कैसे होती है?
4: कई प्रकार से इसमें देखिए आप, डिजिटल लेन देन से बचत होती है। एक तो पहला बात है, आप मोबाइल के थ्रू या जिस भी माध्यम से काम कर रहे हैं, आप बैंक या कहीं भी ऐसी जगह, किसी भी जगह जाते हो, तो आपको आने जाने पे ट्रांजेक्शन जो आपका कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, उसका आप जाने का किराया होता है, फिर आपका समय बचता है आने जाने में। दूसरा, जो ट्रांजेक्शन है उस पे कोई शुल्क नहीं है, तो उसमें भी आपकी बचत होती है। तीसरा, जो भी व्यक्ति है वो अगर बैंक में जा रहा है, तो अगर कैश लेके जा रहा है, तो उसमें हमेशा एक चोरी का या खतरा एक रहता है, तो वो इसमें उसकी भी रिस्क नहीं है। और उसके बाद आपका सारा हिसाब किताब जो है आपके मोबाइल में वो सेव रहता है, आप कभी भी उसको अपने अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी आपने खर्च किए हैं, जो पैसे आए हैं गए, सभी आपको मोबाइल

0: से आपको दिख जाते हैं।
1: अगर कहें कि पैसा भी बचा और समय भी,
0: बिल्कुल वैसा ही आप है बिल्कुल, ये आज के समय में तो ये पैसे पैसे से कम नहीं है।
1: कई बुजुर्ग हैं या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर ये ऐसा सोचते हैं कि डिजिटल लेन देन उनके लिए कहीं मुश्किल तो नहीं है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए ये अभी ये एक भ्रम है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे भाई बंधु हैं, इनको चूंकि ये बैंक में जाके आज भी जो है पुराना ये एक सोच है कि हम बैंक में जाएंगे पैसा निकालेंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित है और हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा उसमें, लेकिन ये एक भ्रम है। क्योंकि जो UPI है और जो आपके *123 हैश जैसी सुविधाएं हैं वो बिना स्मार्टफोन के भी काम करती है। अब बैंक और सरकार जो है कई प्रकार के इसके लिए प्रशिक्षण भी चलाते हैं, तो अगर वे थोड़ा इसको अभ्यास किया जाए और थोड़ा इसको समझा जाए तो इसमें कहीं भी किसी के लिए कोई भी वर्ग हो उसको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और वो बड़ा आसानी से इसमें कार्य हो जाता है।
1: जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, उनको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है?
0: कहीं कोई रुकावट नहीं है, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं अगर थोड़ा सा वो उसको समझ लें, बस थोड़ा सा ही समय लगता है उसको समझने में, तो बहुत ही आसानी से आपका UPI के माध्यम से जो है ट्रांजेक्शन और चीजें की जा सकती हैं।
1: अच्छा सर, डिजिटल लेन देन में सबसे बड़ी चिंता होती है सेफ्टी, तो ये डिजिटल लेन देन जो है वो कितना सेफ है सर?
0: ये डिजिटल लेन देन में एक ये सबसे जरूरी चीज है, अगर आप डिजिटल लेन देन थ्रू कार्य कर रहे हैं तो इसमें आज के डेट में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इसमें फ्रॉड्स जो बढ़ रहे हैं उसका कारण मेन ये है कि लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है और लोग को ये जानकारी नहीं है कि किसी भी प्रकार का OTP और पिन जो है कोई भी बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो नहीं मांगता है। तो आप जब भी ट्रांजेक्शन करें या कहीं से आपको किसी प्रकार के फ्रॉड कॉल आते हैं तो आप ये बस ध्यान रखें कि अगर आप OTP नहीं बताएंगे और अपना पिन नहीं बताएंगे तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। लिंक वगैरह जैसे आपको कई बार आते हैं कि आपके फोन पे लिंक आ जाएगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और आपका जो है आपके काम हो जाएगा, तो उस तरह के अनजान लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करें। बैंक जो है वो कभी भी किसी प्रकार से कोई जानकारी जो है वो फोन के माध्यम से आपके निजी जानकारी नहीं मांगता है।
1: सर अगर मान लीजिए गलती से किसी से धोखा हो जाए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए?
0: इसमें आप पहले तो सबसे पहले बैंक को, अगर आपका बैंक के खाते से गड़बड़ी संबंधित गड़बड़ी है तो बैंक को आप तुरंत सूचित करें। फिर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं उनको भी आप सूचना दे सकते हैं। अगर आप समय रहते शिकायत अगर अपनी दर्ज करा दें तो आपकी पैसे मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है।
1: एक सवाल अंत में हम आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जितने भी छोटे दुकानदार आजकल हैं और जो हमारे घरों में गृहणियां हैं, उनके लिए डिजिटल लेन देन कितना उपयोगी है?
0: बहुत बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, सबके लिए ये उपयोगी है। दुकानदार जो हैं उनको पैसे की, खुले पैसों की चिंता नहीं करनी है, ग्राहक को तुरंत भुगतान कर सकते हैं आप UPI के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से बैंक सब QR कोड्स भी के पास दुकानदारों के लिए देते हैं, तो उनसे वो तुरंत जो है भुगतान सीधे उनके खाते में चला जाता है। जहां तक गृहणियों की बात है तो वो खर्च का पूरा रिकॉर्ड उनके मोबाइल में रहता है, जिससे उनके लिए उनके बजट बनाने में आसानी होती है और वो घर चलाना ज्यादा आसान हो जाता है।
1: अगर हम ये कहें कि डिजिटल लेन देन सिर्फ सुविधा नहीं समझदारी भी है तो ये भी गलत नहीं होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्मार्ट आदत है और ये सभी देशवासियों को सभी को अपनाना चाहिए। भारत सरकार भी इसी के लिए लगातार कार्य कर रही है, तो इसमें सभी लोग आगे बढ़ के इसको बिना किसी दिक्कत के बस सावधानियों को रखते हुए ये सभी लोग कर सकते हैं।
1: सर आपने इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: आज की बातचीत से बस यही समझ आता है कि डिजिटल लेन देन कोई मुश्किल तकनीक नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने का एक भरोसेमंद तरीका है। जब समय की बचत हो, पैसा सुरक्षित रहे और हर लेन देन का हिसाब अपने हाथ में हो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एक छोटा सा कदम मोबाइल से भुगतान और बड़ा सा फायदा सुकून, सुविधा और सुरक्षा। तो आइए डिजिटल को अपनाएं, सावधानी रखें और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में खुद को भी मजबूत बनाएं।

इससे जीवन बहुत ही आसान भी हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी और डिजिटल लेन देन दोनों ही हमारे जीवन को सरल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। हाँ, एक हमें जहाँ स्वच्छ वातावरण दे रहा है तो दूसरा हमें तेज़ और आसान भुगतान की सुविधा दे रहा है। तो हमें भी इन दोनों को बढ़ावा देना चाहिए। और देखिए, इसमें सरकार भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है कि वो भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी कि इसमें किस तरीके से जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और बेहतर किया जाए इसको पहले से, इसके लिए और ई गवर्नेंस और बेहतर हो सके इसके लिए लगातार इस प्रोजेक्ट में सुधार के साथ साथ इसको शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लगातार बदलाव हो रहे हैं, AI भी आ गया है और उसमें भी कई सारे अब नए नए अपडेट हो रहे हैं, तो आने वाले समय में युवाओं को कैसे बेहतर किया जाए उनकी स्किल को, इसके लिए 3 लाख युवाओं को AI और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और कौशल विकास मिशन के द्वारा। इसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ डाटा साइंस का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है और इससे रोजगार क्षमता बढ़ेगी। जब हमारे युवा साथी इसमें स्किल्ड होंगे और आने वाले समय में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है उसमें स्किल्ड होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें रोजगार में बढ़ोतरी भी होगी। तो साथियों, अब समय भी हो रहा है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन हम आपसे विदा लेंगे इस वादे के साथ कि मिलेंगे फिर से किसी नए दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, इस तरीके से देखिए किस तरीके से जो बताया शोभित ने लोगों से बातचीत के माध्यम से, और जिन लोगों ने अपने अनुभव बताए उन्होंने यही बताया कि डिजिटल लेन देन हमारे जीवन का न सिर्फ एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है बल्कि

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जून इज मंथ फॉर नेशनल इनफर्टिलिटी अवेयरनेस। लेट्स लिसन फ्रॉम इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट।
2: आई एम डॉक्टर नमिता दास, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, दास नर्सिंग होम, फतेहगढ़, फरुखाबाद। आई एम अ वॉइस फॉर फर्टिलिटी, अ वॉइस फॉर कंप्लीट फैमिलीज। एवरी कपल ड्रीम्स ऑफ अ फैमिली। फॉर मेनी इनफर्टिलिटी कॉजेज अ क्रिएट एंड क्रिएट्स a silent delay. So clinically, infertility means not achieving a pregnancy after a year of trying, affecting almost one in six couples. And remember, it's just not a women's issue. Both the partners are equal here. So from lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's the time to break the stigma, start the conversation, and seek timely medical advice. So let us all come together to become a voice for complete families. Thank you.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार।

0: बार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीरेवेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नगरस्य पार्टी मुख्यालये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता रविशङ्करप्रसादः अवदत् यत् आपातकालस्य तात्कालीनप्रधानमन्त्री इन्दिरागान्धीवर्यायाः आसन्दं रक्षितुं न्यायपालिकायाः उपरि आक्रमणं जातं। प्रसारमाध्यमानि पीडितानि। विपक्षस्य नेतारः कारावासिनश्च कृताः। आपातकाले प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य भूमिकायाः प्रशंसां कुर्वन् श्रीप्रसादः अवदत् यद् मोदीवर्यः गुजराततः उत्तरभारतं यावत् उल्लेखनीयरूपेण प्रयत्नान् अकरोदिति।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना संविधान हत्या दिवसस्य अवसरे पूर्व प्रधानमन्त्रिणा अटल बिहारी वाजपेयी वर्येण लिखितायाः कवितायाः पङ्क्तयः पठिताः। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् एषा कविता न केवलं पङ्क्ति संग्रहः अपितु आपातकाले लोकतन्त्रस्य उपरि आरोपितायाः वेदनायाः श्वसनावरोधस्य प्रतिबन्धानाञ्च सजीव अभिव्यक्तिः अस्तीति।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस् जयशङ्करः अवदत् यत् विश्वम् अधुना अधिकशस्त्रीकरणम् अधिकसमाह्वानानां स्वीकरणं सामाजिकमाध्यमयुगाय उपयुक्तां राजनीतिं च पश्यति। दक्षिणकोरियादेशे जेजु फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 इति सम्मेलने सम्बोधयन् डॉ एस् जयशङ्करः वैश्विकचिन्तानां निराकरणाय अधिक अन्ताराष्ट्रियसहकार्यस्य आवश्यकताम् अपि उद्घोषयत्। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भारतस्य प्राचीनदर्शनम् उद्धृत्य अधिकसहकार्यपूर्ण विश्वव्यवस्थायाः निर्माणाय तमेव मार्गदर्शकसिद्धान्तं निर्दिष्टवान् च। हरियाणाराज्यस्य गुरुग्रामे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 इत्यन्तर्गते द्विदिवसीयं ब्रिक्स ऊर्जामन्त्रिणां सम्मेलनम् आरब्धम्। केन्द्रीय विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टरः अवदत् यत् आर्थिकवृद्ध्यर्थं सामाजिकप्रगत्यर्थं मानवविकासाय च ऊर्जा अत्यावश्यकी अस्तीति। वेनेजुएलादेशस्य राष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिक्स वर्या अद्य प्रातःकाले कराकस नगरे क्षेत्रं परितश्च 0.27 मित तीव्रताङ्कानां भूकम्पानां कारणेन बहूनि भवनानि भग्निभूतानि इति उक्तवती। तया आपत्कालस्य घोषणा च कृता। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् शक्तिशाली भूकम्पानां श्रृङ्खलायाः अनन्तरं 32 जनाः मृताः, 700+ जनाः व्रणिताः सन्तीति। एतन्निमित्तम् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुःखं प्रकटितवन्तौ। सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् भारतं सर्वैः पीडितैः सह ऐक्येन स्थितमस्ति, सर्वेभ्यश्च यथासम्भवसाहाय्यं प्रदातुं च आश्वस्तिम् अददात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारते अमेजॉन संस्थायाः 48 बिलियन डॉलर इत्यस्य अभिलेख्य निवेशस्य स्वागतम् अकरोत्। श्रीमोदी नवदेहल्याम् अमेजॉन संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेस्सी इत्येतमपि मिलितवान्। अद्य प्रातः जापानदेशस्य ईशान्यभागे 7.2 तीव्रतायाः शक्तिशाली भूकम्पः अभवत् येन न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः आहताः। इवाते प्रान्तस्य पूर्वतटे प्रायः 40 किलोमीटर मिते गांभी

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यही लोकतंत्र का आधार है।
2: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए योजना का लाभ, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
1: वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
3: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे, जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2-3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज पर अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना, हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी यही इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं, और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर

0: दिया है। वहीं दो कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की नवी तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशूरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, साथ ही आलमे आशूरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले

नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय

0: राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समा

सरबरा एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मुल्क में ही तैयार करदा इस निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि इसने बालाकोट कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशनों में अपनी काबिल एतमाद कारकर्दगी को साबित कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के नए तकर्रुकर्दा हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में वाकई बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपनी सिफारती असनाद पेश करने के बाद बाजाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदारती महल में असनाद पेश करने की तकरीब के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारतीय वीजा दरखास्त मरकज IVAC का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के कामकाज का जायजा लिया और हुक्काम से मुलाकात की। इस मरकज में वीजा दरखास्त गुजारों की बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के शहरियों के लिए मामूल की वीजा खिदमात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सियाहती वीजा के लिए दरखास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएंगी। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। नायब सर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खिराज अकीदत पेश किया जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार के दिफा में साबित कदम रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आईन पर बराह रास्त एक हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिविल आजादियों को मुअत्तल कर दिया गया था, इजहार राय की आजादी को खत्म कर दिया गया था और सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और सामाजिक कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की निकात के दौरान किसी भी ऑपरेशनल कोताही के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी होनी चाहिए। वो आज अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे थे जिसमें सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिफाजती इकदाम, आफात से निपटने के इंतजाम और दिगर अहम इकदाम के लिए एक जामे और मरबूत मनसूबाबंदी का तरीक़ेकार अपनाने पर जोर दिया ताकि यात्रियों के लिए एक महफूज और यादगार यात्रा को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के लिए ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और शिमाल मशरकी रियासतों में कल मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज देर रात अमरीका के शहर फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। ग्रुप ई के एक दिगर मैच में अमरीका में ईस्ट रूदरफोर्ड के मकाम पर जर्मनी और इक्वाडोर आमने सामने होंगे। ये दोनों मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 बजे शुरू होंगे। बाद में कल सुबह सवेरे अमरीका के शहर आर्लिंगटन में ग्रुप एफ के एक मैच में जापान का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह सवेरे 4:30 पर शुरू होगा। इससे पहले आज सुबह मॉन्टेरी के मकाम पर जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया पर 1-0 से जीत दर्ज की। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत के इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चलो बेटी सब आ गए।
1: वो आ गए?
0: वो तो नहीं है।
1: नहीं आएंगे।
0: क्या मालूम, लेकिन लोग बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
1: जो खुद बेचैन है उसको लोगों की बेचैनी से क्या।
0: अगर महफिल शबाब पे है बेटी। और
1: उस्ताद जी महफिल को कहिए थोड़ी देर और इंतजार करें।
2: शबो क्या बात है बेटी?
1: कुछ तो नहीं है।
2: कमाले लगता है उस्ताद जी जरा ज्यादा फिल्म खींचने लगे। चल मैं बारी शमा के बगैर परवाने तड़प रहे हैं। चल जल्दी कर।
1: और यहां परवाने के बगैर शमा तड़प रही है।
2: क्या कहा?

0: आज फिर आवाज के मुकाबले गजल फीकी रह गई।
1: क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं जानती हूँ आप।
0: क्या जानती हैं आप?
1: आप आकाश साहब हैं
0: जी।
1: आदाब।
0: आदाब।
1: मुझे माफ कर देना, बहुत मुश्किल तो ना होगा?
0: बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं खुद मुजरिम
1: जी।
0: मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, और आपके दिल का हाल जान लिया। क्या ये जुर्म नहीं?
1: क्या सचमुच आपने ये जुर्म किया है?
0: न किया होता तो आता क्यों? मेरी शायरी को कोई दिल से तोल रहा है, ये सोचकर मुझसे रहा नहीं गया। आवाज और सूरत का इतना खूबसूरत संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें तो किसी हरे पत्ते के सीने पर होना चाहिए था शबनम, कहां तुम कमल बनकर इस कीचड़ में आ गई।
1: अगर मानते हैं मैं कमल हूं तो मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए।
0: कमल हमेशा कीचड़ में नहीं रहता शबनम, तुम्हें जरूर कोई ना कोई इस कीचड़ से निकालेगा, मैं नहीं तो कोई और सही।
1: मैं कीचड़ में रहूं या गंगा जल में, एक बात याद रखिएगा, मैं शबनम हूं, आकाश से गिरी हूं, आकाश में ही लीन हो जाऊंगी।
0: आकाश तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेगा।

0: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी, जिंदगी मिले सर।
0: शबनम
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म से कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर है।

0: इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very high